ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में

0: इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है पर निंदा से बचें। आलेख एवं वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: यह देखने में आता है कि जहां चार मित्र या सखियां मिल जाएं तो गपबाजी आरंभ हो जाती है और उन गप्पों में ज्यादातर पर निंदा का हिस्सा होता है। हमारे घरों में इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। पर निंदा में सुख तलाशने वाले लोग ये जान ही नहीं पाते कि कब उन्होंने दुख के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, काहू को नहीं नींद दिए, चाहे जैसा होए फिर ताकू बंदिए, साधु लच्छ है सोए। यानी संत कबीरदास जी का कहना है कि व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी निंदा मत करें। इसमें समय नष्ट करने की बजाय उस आदमी की बार बार सराहना करनी चाहिए जिसके लक्षण साधुओं की तरह हो। कबीरदास जी का ये कहना बड़ाई के लिए नहीं बल्कि मनुष्यता के कल्याण मात्र के लिए है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी निंदा न करे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी कहते हैं, बुराई करने से पहले हमें खुद को बुरा बनना पड़ता है। अच्छा होकर कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है बुराई बाद में की जाती है, पहले खुद को बुरा बनना पड़ता है। दूसरों की निंदा करने से वो बुराई और उसके प्रभाव आप में आ जाते हैं, फिर भी लोग बुराई में रस लेना बंद नहीं करते। हो सकता है बुराई करने से एक बार वो व्यक्ति कुछ लोगों के लिए बुरा बन जाता है, पर देर सवेर उसकी अच्छाइयां ही विजय प्राप्त करती हैं। उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं और हम बुराई करके खुद को और बुरा और पाप के भागी बना लेते हैं। इसलिए गांधी जी 3 बंदरों को प्रतीक स्वरूप गुरु मान उनकी मुद्राओं से ये ज्ञान दर्शाया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। यह जहां आपके कल्याण के लिए है, वैसे ही पूरी मनुष्य जाति को भलाई की आंख से देखने का प्रतीक भी है। कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना,

से बुरा न कोई। कबीरदास जी का तात्पर्य है, संसार में बुरा तलाशने में निकला तो कोई भी बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैंने अपने भीतर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। किंतु हम अपने भीतर न झांक कर बाहर की दुनिया में बुरा और बुराई खोजने में अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी इस आदत के गुलाम बन जाते हैं और मानवता के प्रति हमारी निष्ठा खत्म हो जाती है। संत श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, पर निंदा किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। यानी पर निंदा करने से कुछ भी हाथ नहीं आता, अरे मूर्ख प्राणी तू पाप का पहाड़ व्यर्थ अपने साथ लिए जा रहा है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, दोष पराया देखी करे चले हसंत हसंत, अपना याद ना आवई झांका आदिनांत। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, दूसरों के अवगुण दोष देखकर हम उस पर हंसते हैं और उसकी बुराई करते हैं, पर उन्हें अपनी देह में स्थायी दोष

0: रहते हैं और न ही दिखाई देते हैं, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए सावधान होकर जीने का उपक्रम करें और बुराई के प्रति सावधान हो जाएं और किसी की भी निंदा नहीं करें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था पर निंदा से बचें। आलेख एवं वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आरंभ होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 212 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 214 तक की चौपाई का सहस्वर पाठ। संगीतकार है सतीश भाटिया और स्वर वाणी जयराम और उत्तरा केलकर का है।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे बुजुर्गों का सम्मान, पैतृक संपत्ति में बेटियों और बहुओं के कानूनी अधिकार, औषधीय पौधों का महत्व, महिलाओं में खून की कमी, कारण और निवारण। साथ ही साथ वार्ता होगी महिला स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आयुर्वेद के संदर्भ में। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रीति गुप्ता। और इसी के साथ साथ होंगे रसोई से और कुछ ब्यूटी टिप्स।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी बोलने से पहले सोचें। लघु जानकारी होगी विकसित भारत में युवाओं की भूमिका, अपनी विरासत को अपने आज से जोड़ें, वाद्य यंत्र मोरचंग, यात्रा के समय रखें सावधानी और साथ ही साथ रोजगार और क्विज टाइम।

संध्या 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे बाजरा की उन्नत किस्में, वृक्षारोपण और वन महोत्सव, बेहतर जल उपयोग के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, वर्षा काल में पशुशाला की सार संभाल और साथ ही साथ मौसम की जानकारी होगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय होंगे पीएम 15 वर्ष सूत्रीय फॉर्मूला, मौसम अनुकूल हो खान पान, खेलों का महत्व। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पर कार्यक्रम होगा हेल्दी बिकाना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और जागरूकता पर आधारित विशेष मासिक कार्यक्रम

इसमें भेंट वार्ता होगी कैंसर के इलाज में नई संभावनाएं विषय पर डॉक्टर जितेंद्र नागल से श्रीमती कविता वर्मा की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। विषय है ऊँटों में होने वाले रोग एवं उपचार। वाचक स्वर है श्री सत्यनारायण शर्मा का।
1: राम राम। आज अपन बात करा हाँ ऊँटा में होने वाला रोग और बियारो उपचार व रोकथाम। वो तो आप जाना ही हाँ कि शुष्क और अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊँट रोग विशेष महत्व तो है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी रे काम लेकर आवागमन पानी और बोझो ढोना सगला काम ऊँट रहे और ऊँट रहे गाडर द्वारा कराया करें। कार्य क्षमता जिकी है ऊँटरी व ऊँठा रहे स्वास्थ्य और खान पान मथे निर्भर कराया करें। इर खातर ऊँट रो स्वस्थ रहनो ऊँट रो तंदुरुस्त रहनो बहुत ही जरूरी है। और इन सारू आप आज बात करा ऊँठाऊँ संबंधित बीमारियां और बीमार उपचार। ऊँट जिको है मुख्य लक्षण यदि आप बात करा कि भाई ऊँट स्वस्थ को नहीं इन अपने क्या ध्यान लगे तो देखो बात आ है कि यदि ऊँट जुगाड़ी करनो बंद कर दे चारो है दानो है खाना पीनो बंद कर दे और नाकू पानी गिरने लग जाए तो आपने समझ लेना चाहिए ऊँट रहे मैंने कहीं ना कहीं बीमारी का लक्षण आ रहा है। ऊँट में उन्हें जिकी मुख्य बीमारियां हैं वह है विषाणु जनित रोग जीवाणु जनित रोग परजीवी जनित रोग पोषक तत्वों की कमी होने वाला उत्पन्न रोग और तंत्री बीमारियां। सगलों पहला बात करा विषाणु जनित रोग। विषाणु या जिकेन अपना वायरस क्या करा ब्यू जिकी बीमारियां हैं बिर में ऊँट रमने जा ऊँट माता कंटेजियस एक्थाइमा रेबीज आदि जिका मुख्य रोग है। कैमल पॉक्स या जिकेन अपना माता रोग चेचक रोग भी किया करा हाँ विषाणु द्वारा गर्मी और बरसात दिन में होया करे 6 महीनों लेर 2 साल का जेका ऊँट है बिहार बच्चा ऊँट बच्चा है बिहार में संभावना ज़्यादा रिया करे। रोग रिया अवधि जी की है 2-4 सप्ताह तक रिया करे और एक बार रोग पीड़ित हो जाए तो ई रोग रे प्रति ऊँठर में रोग रे प्रति रोधक क्षमता जी की है बहुत उत्पन्न हो जाए कर। लक्षण जिका है होंठा में गुदा में जननांगा और पेरा ने चारा खानी छोटी छोटी फुंसियाँ देखने मिले अपने जिका ने अपा पेप्यूल्स भी किया करें और बिहार महीने बाद में वह फाला में बदल जाया करें। फाला जिका है मवाद बढ़ जाया करे तो बिहार ने पस्ट्यूल्स किया करे और जिका सूखने के बाद भी हमें खरूंट बन जाया करे। कई बार रोग ठीक होने के बाद भी कहीं है कि पैरान में कंपन रह जाया करे ऊँट बहुत ही कमजोर हो जाया करे चारों खाणो छोड़ दिया करे और बुखार आ जाया करे। उपचार की बात है तो रोगी ऊँट ने दूसरे जिका स्वस्थ ऊँट है भी हम अपने अलग कर देना चाहिए। गीले घावरे माथे केला माइन लोशन जिंक ऑक्साइड पोविडिन आयोडीन लगाना चाहिए जबकि सूखो या खरूंट आ जाए बीर माथे अपने पोविडिन आयोडीन और एंटीसेप्टिक मलम जिको है लगाना चाहिए। फिर बाद एक बात आप करा रेबीज जिकन हिड़काव जल आतंक या पागल होनो भी किया करा वो रोग जिको है लासा वायरस होया करे और अधिकतर जिका पागल कुत्ता या जंगली जानवर काटने द्वारा होया करे वो विषाणु जिको है बिहार थूक व लार में होया करे। लक्षण की बात करा तो ऊँट जिको है खाणो पीणो बंद कर दे मूठ सू मुँह ऊँट रहे मुँह सू लार गिरन लाग जाए ऊँट बहुत ही उत्तेजित हो जाया करे खुद ने या फिर दूसरे जानवर ने काटन दौड़न लाग जाया करे चमकती आँखियाँ और सिर जिको है अधिक ऊंचाई लिया हुआ करे और पास रही चीज़ें वो बार बार काटया करे तो ऊँट रहे पागल हो जाने के बाद और पशु यदि मर जाए तो भी मरे पशु ने अपने जला देनो चाहिए। निदान निजर तीन बात है तो भाई संदेहास्पद जिका ऊँट है जिका मतलब लगे विलक्षण आ रहा है तो घाव ने साबुन धोनो पानी या फिर एंटीसेप्टिक लोशन अच्छी तरह धो देना चाहिए। घाव ने खुलो छोड़नो एंटी रेबीज वैक्सीन जी की है चिकित्सक के परामर्श अपने लगानी चाहिए। जीवाणु जनित रोग की बात करा तो मुख्य रोग एंथ्रेक्स हीमोरेजिक

0: सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर, कंटेजियस नेक्रोसिस, साल्मोनेलोसिस मुख्य रोग है। एंथ्रेक्स की बात करें जिके नपलिया जवर या गिल्टी रोग भी किया करा वो रोग बेसिलस एंथ्रासिस जीवाणु होया करे। वो एक भयंकर संक्रामक रोग है जिको ऊंट रमने मनुष्य में भी ऊंट द्वारा मनुष्य में भी हो सके। पीड़ित मनुष्य रे शरीर पर मवाद युक्त फुणसियां जी की है बा हो जाया करे। लक्षण जी का है ई रोग रहा है कि जल्दी और अचानक 2-4 घंटा में ऊंट जी को मर जाया करे। मुंह और बिरगुदा सू स्याही माइल रंग रो खून निकलिया करे। तेज बुखार आ जाया करे। चमड़ी रे नीचे सोजन आ जाया करे। और बचाव रे मैंने अपने एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन 1 मिलीलीटर चमड़ी रे नीचे लगानी। सु रोग वे कोनी। प्रतिरक्षा 9-12 महीना तक रिया करे। पर वो टीको बीमारी वाला क्षेत्र में ही अपने लगानो चाहिए। और तुरंत अपने जगह पशु चिकित्सक है भी हम संपर्क अपने करना चाहिए। अब बात करा पोषक तत्वों की कमी होने वाली बीमारियां। पोषक तत्वों की कमी होने वाली बीमारियां मुख्यतः खनिज लवण और विटामिन की कमी होया करे। ऊंट में नमक, कैल्शियम, फॉस्फोरस की कमी साधारणतः पाई जाए। ई कमी ने प्रतिदिन 50 ग्राम खनिज लवण और नमक देर आप पूरा कर सका। विटामिन ए की कमी से रतों के रोग हो जाया करे। विटामिन ए की 18 लाख 36 लाख यूनिट इंजेक्शन लगा आप कमी दूर कर सका। पेट में कीड़ा होने पर विटामिन बी की कमी हो सके जिसके सू यकृत रस रा टीका लगा सका। खनिज लवणा की कमी के कारण टोड़ा टोड़ी जी की मिट्टी चूनो ईंट वगैरह जी का खाण शुरू कर दे या चाटन लग जाए। इन्हें पाई का रोग भी किया करा। ई स्थिति में ने कैल्शियम फास्फोरस जैसा खनिज लवणा की पूर्ति रे सागे सागे पेट रे कीड़ा मारने दवाई भी अपने देनी चाहिए। बीर सागे सागे अपने बात आ है कि भी पशुओं रो ध्यान अपने बगे सारू राखण है, बगे सारू टीकाकरण जी को है लगाना है। और बीमार पशु ने स्वस्थ पशु अलग राखकर भी उपचार पशु चिकित्सक संपर्क कर अपने बगे सारू करवाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। विषय था ऊँटों में होने वाले रोग एवं उपचार। वाचक स्वर श्री सत्यनारायण शर्मा का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्ति

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी रेवाड़ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस धूप छाँव के मौसम में, इस गर्मी और उमस के मौसम में, आज जो रविवार की छुट्टी है और मौसम भी कुछ सुहावना हुआ हुआ है, तो हमारा मन करता है कि उन्हें बाहर घूमें फिरें और घर पर बैठकर या फिर चाय की चुस्कियों के साथ कुछ गुनगुनाएं। तो आइए, क्यों ना इस पल को हम कुछ इस तरह से गुनगुना के इंजॉय करें।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, ये जो मौसम है गर्मी का और मानसून जो आ रहा है, इस मौसम में हमें हमारे शरीर का, खाने पीने का, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में शरीर का जो तापमान है वो बहुत बढ़ जाता है और जो पसीना आता है उस पसीने में जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है और उससे क्या है कि हमारी जो पाचन की शक्ति है वो कम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में हमें तरबूजा, खरबूजा, संतरा, ककड़ी, ये सब फल भरपूर खाने चाहिए क्योंकि इनसे हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस मौसम में अलग से कोई सब्जी नहीं आती,

लेकिन बच्चों को लौकी, तुरई, पेठा ये सब पसंद भी नहीं है, लेकिन इस मौसम में इनको खाना चाहिए, क्योंकि ये मौसम में जो ये जो सब्जियां होती है ये हल्की और शरीर को ठंडक देने वाली होती है, इसलिए इन सब्जियों को खाना ज़रूरी होता है। और जहाँ तक हो सके दोपहर के और शाम के भोजन में हल्का भोजन करें, जैसे चावल, मूंग की दाल, चपाती या फिर एकदम हल्का दलिया बनाकर। इससे हमारा शरीर हल्का रहता है और पाचन तंत्र पे भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। इसलिए इस मौसम में हमें पानी की पूर्ति करने के लिए, अपने पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए हल्के और सुपाच्य भोजन करने चाहिए। इस मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ लेने ज़रूरी हैं, जैसे नारियल का पानी है, छाछ है, पुदीने का पानी है या फिर ORS का घोल है। यदि हम गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो उस समय भी हमें अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा सचेत होकर निकलना चाहिए, छाता लेकर जाएं और जहाँ तक हो सके आप कुछ ना कुछ खा पी कर ही घर से बाहर निकलें। इससे होगा क्या कि आपको जल्दी से जल्दी लू नहीं लगेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर आप गर्मी के मौसम में बाहर जा रहे हैं तो।

का पानी है या फिर ORS का घोल है। यदि हम गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो उस समय भी हमें अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा सचेत होकर निकलना चाहिए। छाता लेकर जाएं और जहाँ तक हो सके आप कुछ न कुछ खा पी कर ही घर से बाहर निकलें। इससे होगा क्या कि आपको जल्दी से जल्दी लू नहीं लगेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप गर्मी के मौसम में बाहर जा रहे हैं तो आपको इस मौसम में भारी जो मसालेदार भोजन है या जो डीप फ्राई चीज़ें हम करते हैं, तलने वाली चीज़ें जो हैं, वो हमें कम से कम खानी चाहिए। चाय कॉफ़ी को भी थोड़ा सा कम कर देना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ज़्यादा चाय कॉफ़ी से भी एसिडिटी होने की संभावना रहती है। इस मौसम में जैसे भारी सब्जी है, चने, राजमा, तो उनको भी कम से कम खाना चाहिए। इस मौसम में जितना हो सके हमें हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि वो पचने में आसान रहता है और हमें भूख भी बार बार लगती है और दिन भी बड़े हैं। इस वजह से हल्का भोजन करने से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और बात करें हम मानसून की, जैसे अभी जो मानसून आ रहा है, इसमें बारिश के मौसम में हम देखते हैं नमी होती है। इस नमी के कारण बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती है, लेकिन हमें उन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से अगर कोई चीज़ पड़ी है तो हमें उसे नहीं खाना चाहिए, पहले उसे अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े जो लग जाते हैं वो हमें पता नहीं चलते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस मौसम में ताज़ा भोजन करना चाहिए और गर्म भोजन खाना चाहिए जो आसानी से पच सके। पुराना गेहूँ, पुराने चावल, मूँग की दाल, मूँग की खिचड़ी खानी चाहिए। सब्जियों में लौकी, कद्दू, सहजन, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। श्रोताओं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अदरक, लहसुन, सौंठ और काली मिर्च का भी उपयोग करना चाहिए। यदि आप चाय पीते हैं या फिर आप गर्म पानी पीते हैं तो उसमें भी ये सब डालकर आप पी सकते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। इस मौसम में हमें उबाल कर पानी या फिर फिल्टर पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं इस मौसम में नमी के कारण कीड़े पनपते हैं। इस वजह से इस मौसम में ज़्यादातर टाइफाइड होने का खतरा भी बना रहता है, इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी होता है। इस मौसम में हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ और जो बाहर का जो खाना होता है ना, वो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कब से बना है, उन पे कितनी मक्खियाँ बैठी है, ये हमें नहीं मालूम होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह की बनाई हुई सब्जी अगर घर पे भी हमने बाहर रख दी है तो वो शाम तक ख़राब हो जाती है इस मौसम में। इसीलिए हमें बाहर जो खाना हम खाते हैं उससे बचना चाहिए। इस मौसम में बैक्टीरिया के पनपने के कारण जो बनाया हुआ खाना है उसमें जल्दी से जल्दी ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और वो भोजन अगर हम फ्रिज में भी रख देते हैं तो भी उसे नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके इस मौसम में हमें ताज़ा ही बनाकर खाना चाहिए। इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारा दिन और दिमाग दोनों तरोताज़ा रहेंगे। तो चलिए इसको और तरोताज़ा करने के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम अब बात करें कि जो बच्चे हैं उनके स्कूलों की छुट्टियां तो खत्म हो गई है और वो वापस स्कूल जाने लग गए हैं, लेकिन हमने देखा है कि अभी छुट्टियों में जब बच्चे घर पर थे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन टाइम पर, फ़ोन पर और टीवी देखने में ही लगा रहता था। हम देखते हैं कि आजकल जब पार्क हम जाते हैं तो बच्चे वहाँ बहुत कम खेलते मिलते हैं, एक कोने में बच्चे फ़ोन लेकर बैठे होते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं। हम माँ बाप हैं और हमें ही उन्हें ये समझाना होगा कि खेल हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, मानसिक, सामाजिक और हर तरह से हमें विकसित करता है। श्रोताओं, हमने देखा है कि अगर हम सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन में सीमित रहते हैं तो हमें जो मानसिक बीमारियां हैं वो लग जाती है और हम ज़्यादा व्यवहारिक भी नहीं रह पाते हैं क्योंकि हर समय हम फ़ोन में ही डूबे रहते हैं। इसी को देखकर हमारे बच्चे भी वही सब करते हैं, इसीलिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी जिससे बच्चे ये समझ सकें कि हमें ये नहीं करना चाहिए। आजकल के समय में जो मोबाइल की लत बच्चों को लगी और साथ ही साथ पढ़ाई का जो बोझ है, इसके दबाव में बच्चों का पूरा विकास नहीं हो पाता है, ना ही वो खेल कूद पाते हैं, ना ही वो पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे पाते हैं। श्रोताओं, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि स्कूल से घर आने के बाद बच्चे को 1 या 2 घंटे रेस्ट करने दिया जाए, उसके बाद उसका जो होमवर्क है वो पूरा करे और उसके बाद वो थोड़ा बहुत बाहर खेल सके। यदि वो बाहर खेलता है बच्चों के साथ तो उसका जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो उसी से होगा। उसका मानसिक विकास तो हम कर देंगे लेकिन उसका जो शारीरिक विकास है, भाग दौड़, और आजकल हमने देखा है बच्चे थोड़ा सा खेल कूद करने के बाद बोलते हैं हमारे पैरों में दर्द है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उनको घर की 4 दीवारी में ही कैद करके रख लेते हैं। खुद वो बाहर जाना नहीं चाहते और हम उनको निकालना नहीं चाहते क्योंकि हमारे भी 1000 काम होते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि हम बाहर उनके साथ पार्क में थोड़ी देर समय बिताएं या उनके साथ दौड़ लगाएं, उनके साथ खेलें तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा। बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए उनके जो शरीर का रक्त संचार है या फिर किसी भी तरह की शरीर की तंदुरुस्ती है उसको बढ़ाने के लिए हमें उनका ध्यान खेल की तरफ करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक मनोरंजन का साधन हमें बनाना होगा, उससे उनका मानसिक, शारीरिक दोनों ही तरह का विकास संभव हो पाएगा। यदि बच्चा शारीरिक गतिविधियां करता है तो उससे उसके शरीर में जो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, उसके जो मन में तनाव और अवसाद होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ खेल हमारे बच्चों को बहुत से नियम सिखा देता है, जैसे अनुशासन है या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। खेल खेल में बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो खेल में सीखते हैं वो जीत और हार को सीखते हैं। यदि वो जीतते हैं तो भी वो उन्हीं बच्चों के साथ वापस खेलते हैं और ये हार भी जाते हैं तो वापस उन्हीं बच्चों के साथ वापस खेलते हैं, तो उन्हें आने वाले जीवन में हार जीत जो होती है उनको सहन करने की, उनका दबाव अपने ऊपर सहन करने की हिम्मत बन जाती है। एक होता है ना कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम हर चीज़ को सीख जाते हैं, वैसे ही बच्चे भी अगर घर से बाहर निकलते हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं तो उनका भी हर तरह से विकास हो सकता है। शरीर को मजबूत रखने के लिए भी हमें बच्चों को खेल कूद कराना ज़रूरी है। उनकी हाइट, आजकल हम देखते हैं सबसे ज़्यादा माँ बाप की चिंता होती है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हाइट कैसे बढ़ेगी। पहले के टाइम में हम देखते हैं कि पार्क में या जहाँ भी ग्राउंड होता था वहाँ बच्चे खूब सारे क्रिकेट खेलते होते थे या जो व्यायाम के साधन होते थे उनसे व्यायाम करते मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में जब हम पार्क देखते हैं तो वहाँ शायद घूमते हुए लोग जरूर मिल जाते हैं लेकिन खेलते हुए बच्चे बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए हमें खुद को पहल करनी होगी, अपने बच्चों के साथ आप समय बिताएं, उनको बाहर लेकर जाएं, उनके साथ खुद खेलें अगर कोई बच्चे खेलने वाले नहीं हैं तो।

बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ही सोचते हैं कि दिन भर हम भी घर में काम करने के बाद थक जाते हैं तो दो चक्कर ग्राउंड में लगा आते हैं, तो शरीर की थोड़ी थकान और जो पूरे दिन घर में रहने के बाद हम हो जाते हैं तो उससे थोड़ा निजात मिल जाता है। वैसे ही बच्चों को भी हमें ये सब चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, क्योंकि वो जब पढ़ाई से दूर होते हैं तो वो मोबाइल में चले जाते हैं, मोबाइल से दूर करते हैं तो वो टीवी में चले जाते हैं, तो इस तरह से वो अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। लेकिन हमें उनको इस जो ये जो लत लग रही है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये समस्या शायद आजकल हर माँ बाप की है कि बच्चे मोबाइल से जुड़े रहते हैं और हमें उन्हें मोबाइल से दूर करना ज़रूरी है। तो उनका कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए आप, जैसे या तो इंडोर गेम उनको खिलाइए, आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा, इसीलिए वो खेल के तरफ आकर्षित हो पाएंगे। खेलने से आप देखते हैं कि बच्चों की जो याददाश्त है वो भी अच्छी हो जाती है और कोई भी तरह की समस्या होती है तो बच्चे खुद ही सुलझा लेते हैं। और अगर हो सके आसपास में खूब सारे बच्चे हैं तो बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ये सब भी खेल सकते हैं। इससे बच्चों में सहयोग की भावना तो आती है और साथ ही साथ बच्चे जितनी भाग दौड़ करते हैं उतना ही उनका शरीर स्वस्थ भी रहता है। श्रोताओं, हम जब देखते हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है या उनमें कोई भी अच्छी चीज़ का विकास करना है तो पहल हमें खुद से करनी होती है। क्योंकि हम खुद कई बार फ़ोन लेकर खाना खाते हैं तो बच्चे भी यही सब देखते हैं और फिर हम उनको रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए शुरुआत खुद से करें, फ़ोन को साइड में रखें और बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। उनको हो सके जितना हो सके उनके साथ खेलें कूदें और उनको अपना टाइम दें जिससे उनका मन मोबाइल से कुछ दूरी बना ले। और हो सके तो जो पुराने जो हमारे खेल होते थे, छुपन छुपाई है, भाग दौड़ भरे जितने भी खेल होते हैं वो बच्चों को आज के टाइम में नहीं खेलने आते, तो उनको वो सब सिखाएं तो उनको एक अलग सा कुछ मिलता है ना, तो उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। तो उनको वो आकर्षण दिखाकर आप अपने मोबाइल की लत और उनका जो भी टीवी से लगाव है उसको कम कर सकते हैं और उनको खेलों की तरफ ले जा सकते हैं। इसी के साथ सुनते हैं, आइए प्यारा सा ये गीत।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है अभिमान। स्वर लता मंगेशकर का है। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

आइए कार्यक्रम में सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म से ये गीत। स्वर लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का है। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लीजिए सुनिए आराधना फिल्म से ये गीत। युगल स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, जीवन रुकने का नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम है। सुख दुख दोनों ही जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जीवन का हिस्सा भी हैं, इसीलिए हमें इन्हें स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, इसीलिए हमें चलते रहना है इस वक्त के साथ, क्योंकि जीवन चलने का नाम है।

0: महेंद्र कपूर के गाए शोर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।

0: श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ।

0: राष्ट्र को मिला, ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा

0: और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा।

स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम नांगल कैंसर रिसर्च और रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर। भेंटवार्ता कैंसर के इलाज में नई संभावनाएं विषय पर डॉक्टर जितेंद्र नांगल से श्रीमती कविता वर्मा की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नागल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर।
1: बीकानेर में कैंसर के इलाज का एक विश्वसनीय नाम नांगल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
2: जहां 8,000 से भी अधिक सफल सर्जरी के अनुभव के साथ
1: एम्स दिल्ली के पूर्व चिकित्सक और वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नांगल के नेतृत्व में मिलता है कैंसर का संपूर्ण समाधान।
2: यहां मुंह, गला, स्तन, फेफड़ी, पेट, लीवर, ब्रेन ट्यूमर और हड्डियों सहित सभी प्रकार के कैंसर रोगों का आधुनिक और सटीक उपचार किया जाता है।
1: सही समय पर सही इलाज मिले तो इस जंग को जीता जा सकता है।
2: अपनों के साथ और सेहत के लिए संपर्क करें।
1: नांगल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पता आदर्श कॉलोनी ट्रैफिक पुलिस थाने के पास, बीकानेर।
2: कॉल करें 9001942443 पर। अब कैंसर से डरना नहीं, उसे हराना है।
1: नांगल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर।
3: श्रोताओं नमस्कार। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम आधारित है कैंसर पर। श्रोताओं, कैंसर एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही मन में न जाने कितने सवाल और कितनी आशंकाएं पैदा हो जाती है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज कैंसर के इलाज में नई नई तकनीकें और बेहतर उपचार पद्धतियां मरीजों को नई उम्मीद दे रहा है। इन्हीं नई संभावनाओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नांगल। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बीकानेर आकाशवाणी का मुझे इस विषय पे बात करने के लिए मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
3: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आज के समय में कैंसर के इलाज में क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं।
4: देखिए, आने वाले वक्त में इतने सालों से जो कैंसर को लेके पूरी दुनिया में कैंसर के जो इंसिडेंस है या जो नंबर बढ़े हैं हर उम्र में, हर तबके में, हर जगह पे बढ़े हैं, और उसके साथ साथ हमारे तरीके, उसकी समझ हर कैंसर को और उसकी तकनीकी के भी बढ़ी है, और जिसकी वजह से हम और नए नए तरीके उनके निदान में और आगे तकनीकों से उनका कैसे उसको क्योर किया जाए या पूरी तरह से ठीक किया जाए कैंसर, उसमें हमने कई जगह सफलता भी पाई है।
3: जी जी डॉक्टर साहब, तो पहले जो इलाज होता था और आज के उपचार में मुख्य क्या अंतर आया है?
4: देखिए, आने वाले इस टाइम में बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है, और क्योंकि जिस हिसाब से वातावरण बदला है और अपना जो जीवन शैली बदली है, उससे बहुत से कैंसर के नए कारण भी सामने आए। जैसे पुराने तो सबको पता है कि शराब है, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, पेस्टिसाइड का यूज, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत। अभी नए जो कारण आने, पॉल्यूशन एक बहुत बड़े प्रदूषण जो भी
3: अच्छा,
4: है,
3: इसका भी रोल हो सकता है,
4: बहुत आया सामने। और एक माइक्रोप्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक का यूज, जो यूज घरों में सब जगह दिनचर्या में इतना यूज हो गया कि उसके जो माइक्रोप्लास्टिक कण जो गर्म खाने या जैसे पानी पी रहे हैं, पुराना पड़ा है पानी या गर्म पेय पदार्थ यूज ले रहे हैं, उनके साथ जो ब्लड में जा रहे हैं वो भी एक कारण के रूप में सामने आ रहे हैं। और अपन बात करें निदान में, जैसे कंफर्म करने के लिए हमेशा या कैंसर को पक्का करने के लिए है FNAC, यानी कि सुई से उसमें से सेल्स चेक करना, और दूसरा होता है बायोप्सी, यानी कि उसका एक टुकड़ा लेके, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे या सूक्ष्मदर्शी में नीचे कंफर्म करना कि ये कोशिकाएं हैं वो कैंसर की बन चुकी है। उसमें नए नए तरीके, उस बायोप्सी में भी अभी एक लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं, वो भी एक नया तरीका आ रहा है, काफी जगह धीरे धीरे आ रहा है। उसमें जो कैंसर सेल्स होती हैं, उसके जो डेड सेल्स होती हैं, उनके जो DNA हैं वो ब्लड में मिक्स होते हैं, घूमते हैं, उनको डायग्नो

0: हर कैंसर में अलग अलग उन पे काफ़ी काम हो रहा है,
1: जी
0: और कुछ के टेस्ट और कुछ के कन्फर्मेशन तो उसको सर्कुलेटिंग डीएनए टेस्टिंग के थ्रू लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं, पर्टिकुलर जैसे लंग का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर, उसमें कैसे पकड़ें। कभी कभी ऐसा भी आता है कि बहुत सी चीज़ें कन्फर्म नहीं कर पाते बायोप्सी में भी, तो उनको कैसे जाएं, तो उसमें भी आगे हम जा रहे हैं। पैट स्कैन आजकल बहुत कॉमनली सुनने में
1: जी
0: आने लग
1: हाँ
0: गया,
1: बिल्कुल
0: वो जनरली पूरी बॉडी में है नहीं है, कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है, या कैंसर और बिना कैंसर के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको अलग करने में वो काफ़ी काम में आ रहा है टेस्ट, और अब हर जगह अवेलेबल भी हो गया। और
1: जी
0: उसी में भी उसके और अलग अलग कैंसर के वेरिएशन आ रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर कोई लीवर का है तो उसी का ही टेस्ट हो, गुदद का कैंसर है, प्रोस्टेट, तो उसी का ही बॉडी में उसी की कहाँ
1: जी
0: कहाँ है, तो वो सब चीज़ें भी बड़ी हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने ये बात बताई। लेकिन आज के समय और पहले जो तकनीकें इस्तेमाल होती थी उसमें, और अब जो आधुनिक तकनीकें हैं उनमें क्या कुछ खास आपको लगता है कि बदलाव आया है?
0: देखिए काफ़ी बदलाव आया है पिछले 10 सालों में, देखिए 15-10 सालों में बहुत बदलाव आया। हम यदि सर्जरी से शुरू करें तो हमेशा एक ओपन सर्जरी यानी कि रूटीन धीरे धीरे करके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या
1: जी
0: दूरबीन की तरफ गया, और अब रोबोटिक सर्जरी पे
1: जी,
0: आ
1: मैं
0: चुके
1: उसी पे ही
0: हैं।
1: आने वाली थी। जी
0: तो ये रोबोटिक सर्जरी पे आके होता तो दूरबीन की तरह से ही है,
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी रोबोट करता है, सर्जन बाहर बैठा होता है, वो पूरा चीज़ होता है, कंट्रोल पूरा
1: जी
0: वहीं पे होता है, तो सारी सर्जरी करता सर्जन ही है, लेकिन वो रोबोटिक आर्म होती है
1: जी
0: जो दूरबीन जैसे सर्जरी होती है उसी की तरह से वहाँ जाती है। उसमें वो जो आर्म जैसे हम इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ते हैं वैसे
1: जी
0: आर्म होती है उनकी,
1: ओके जी
0: और
1: जी
0: ऊपर वो आर्म में 360 डिग्री का घुमाव की पॉसिबल है, राइट लेफ्ट दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो उससे हमारे को जो सर्जरी करने में कहीं भी जोड़ने में दूरबीन जो एक सहायता मिलती है, ओपन में भी नहीं, हम हाथ का भी मोमेंट एक लिमिट होता है
1: जी
0: एंगल, तो वो जो बेनिफिट हुए हैं, तो बहुत सी सर्जरियां हम बहुत एडवांस लेवल पे जाके रोबोटिक कर पाए हैं, और रोबोटिक के साथ साथ अब यदि बात कहें तो टेली सर्जरी के भी ट्रायल हो चुके हैं, यानी कि इसको ऐसे समझे मैं बीकानेर में बैठे अमेरिका में भी सर्जरी कर सकता हूँ उसी रोबोट पे।
1: अच्छा बहुत
0: हाँ मैं यहाँ
1: जी
0: पे इसके ट्रायल हो चुके हैं
1: अच्छा बहुत
0: इंटरकॉन्टिनेंट, और इस पे बहुत जल्दी आने वाले सालों में शायद ऐसा भी होगा कि कोई भी एक्सपर्ट कहीं भी बैठा है इंडिया में, अमेरिका का इंडिया में भी कर सकता है और इंडिया का अमेरिका में भी कर सकता है, यदि वो उसका है वो
1: जी
0: सारा उसके थ्रू वही रोबोटिक और वही गाइड टेली
1: जी जी
0: सर्जरी।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये किस तरह के मरीजों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगी?
0: देखिए सारे जनरली रोबोटिक सर्जरी अभी तो जो पेट की सारी सर्जरी है रोबोट के थ्रू होने लग गई है,
1: जी
0: ठीक है, और उसमें जनरली रोबोट के थ्रू वही जो दूरबीन के फायदे होते हैं, दर्द कम होता है, जल्दी रिकवरी होती है, हम घर जा पाते हैं, और कुछ एक जगह बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है उसका उपयोग होता है, जहाँ पे क्योंकि आर्म होती है 360 डिग्री घूमी, तो हम स्टिचिंग या टांके लगाने का काम इतने बढ़िया ढंग से हो सकता है जो एक एज ए ह्यूमन या मैं मनुष्य की तरह की बात करूँ तो उस लेवल पे नहीं हो
1: नहीं हो
0: पाता।
1: पाता
0: हाँ लेकिन करता वो रोबोट नहीं है, सर्जन ही है
1: सर्जन। जी
0: रोबोट के द्वारा,
1: जी
0: मोमेंट उस जो सर्जन मोमेंट करेगा वही वो रोबोट के आर्म करेगा, तो
1: जी
0: वो सारी चीज़ें बेनिफिट। हाँ आने अभी जो सर्जियाँ हो रही है काफ़ी पेन फ्री या बहुत लेस पेन, अर्ली मोबिलाइजेशन जैसे है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये क्या है और पहले वाली जो पारंपरिक सर्जरी थी, दोनों में क्या अंतर है?
0: देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ऐसे समझे जैसे पेट के अंदर सर्जरी है, तो उसके अंदर अपन एक दूरबीन की तरह से ट्यूब डाल के उसके थ्रू कैमरा होता है वो डाल के करते हैं, इसमें बड़ा चीरा नहीं लगता, छोटे छोटे होते हैं जिसमें कई बार एक या दो स्टी से ज़्यादा चीरा नहीं होता, और उसमें हम जैसे डेप्थ के अंदर होते हैं या अंदर जाके बिल्कुल एरिया होते हैं वहाँ पे, कई बार हम ओपन सर्जरी जो होती है उस या पुराने तरीके से कहें उसमें उतना अच्छे से विजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैमरा होता है बिल्कुल उस जगह जहाँ सर्जरी चल रही है वहाँ पे हम देख
1: उसको
0: पाते
1: देख
0: हैं
1: पाते हैं।
0: और
1: जी
0: उसको और अच्छे से कर पाते हैं। हाँ उसमें कुछ एक चीज़ों का हमें लेप्रोस्कोपिक कहें या रोबोटिक कहें
1: जी
0: और पुराने तरीके यानी कि हाथ से कहें वो एक डिफरेंस रहता है कि हम वहाँ पे जो फील ले सकते हैं कि हाँ
1: वो
0: हार्ड
1: नहीं
0: है
1: कर
0: ये
1: पाते।
0: ट्यूमर हो सकता है नहीं है
1: जी
0: वो नहीं, एक एडवांटेज होता है। तो कैंसर में अभी बहुत रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक
1: जी
0: काफ़ी एडवांस गया, पर फिर भी वहाँ जहाँ डाउट होता है तो वहाँ कैंसर में हम कोशिश हो कि हाथ से हो ताकि कोई चीज़ छूटने के चांस

0: कम
1: अच्छा
0: से कम।
1: डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी आप करते हैं, तो क्या इस सर्जरी में पहले की तुलना में कम दर्द होता है या रिकवरी जल्दी होने की संभावना रहती है?
0: आजकल मैंने बताया जैसे एनेस्थेटिस मेडिसिन, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट और साथ में जो ऑपरेशन के बाद जो दर्द है उसके लिए मेडिसिन, उसके तरीके वो इतने बढ़ चुके हैं और कॉमन भी हो चुके हैं कि जनरली आजकल पेन फ्री, इवन हम मेजर से मेजर सर्जरी भी पेन फ्री पेशेंट
1: जी
0: बैठा है दूसरे दिन आराम से, दर्द नहीं है। कई जगह पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया बोलते हैं, मशीन से मेडिसिन जा रही है उस पर बटन लगा, मरीज को यदि दर्द महसूस हो रहा है वो दबाए उसकी डोज बढ़ा ले, एक
1: अच्छा
0: लगे आराम है
1: जी
0: तो कम कर ले। ये भी है फॉरेन में, यहाँ पे भी है, जो समझदार है उसके साथ ये किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब।
0: तो धीरे धीरे करके बढ़ा और लेप्रोस्कोपी में क्योंकि चीरे बड़े नहीं होते तो रिकवरी और फट मोबिलाइजेशन यानी कि पेशेंट को घुमाना फिराना जल्दी होता है, खाना पीना जो, तो हम जल्दी रिकवरी करके घर भेज पाते हैं।
1: भेज सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बताइए कि टारगेटेड थेरेपी ये क्या है और इसका क्या इस्तेमाल होता है और हमारे लिए उपयोगी कितनी साबित होती है ये?
0: ये अभी कुछ सालों से टारगेटेड थेरेपी का बहुत जगह अखबार में, सब जगह ये खूब सुनने में भी आया है
1: जी
0: और कुछ जगह बहुत अच्छे रिजल्ट भी सामने आए हैं। टारगेट थेरेपी का मतलब जो इस शब्द में ही है कि टारगेट यानी कि अपन एक बिल्कुल अर्जुन के आंख, वो मछली की तीर आंख की तरह से, यानी कि जो कैंसर सेल में कोई गड़बड़ हुई है उसको कन्फर्म करें टेस्ट के द्वारा, और उसी के जो विरोध में या उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो दें, वो इंजेक्शन के रूप में या गोली के रूप में, तो उसको टारगेट थेरेपी कहते हैं। ये अलग से कोई मशीन मशीन या कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इंजेक्शन के रूप में या टेबलेट के रूप में होती है।
1: जी, तो जीन टेस्टिंग जो होती है उसी पे आधारित
0: हाँ
1: ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर
0: ये,
1: साहब इसमें?
0: हाँ बिल्कुल, ये जो
1: जी
0: जीन अपन जो ट्यूमर जो बायोप्सी होती है उसी पे जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और ये देखते हैं जो अपने कोई जो जीन था उसमें कोई गड़बड़ है और उसके खिलाफ अपने पास कोई अवेलेबल मेडिसिन है तो उसको यूज़ लें, यानी कि उस पर्टिकुलर जो गड़बड़ है उसी को टारगेट किया, तो इसलिए इसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं। ये अलग से मशीन नहीं, रूटीन इंजेक्शन के रूप में या टेबलेट
1: अच्छा
0: के रूप में ही होती है।
1: जी। अच्छा एक ये बताइए डॉक्टर साहब कि इम्यूनोथेरेपी ये क्या चीज़ है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे असर करती है?
0: ये भी जो थेरेपी की बात करें ये भी इंजेक्शन या टेबलेट के रूप में होते हैं, ज़्यादातर इंजेक्शन के रूप। इम्यूनो का मतलब अपने रक्षा तंत्र, जो रक्षा तंत्र कैंसर में भी रोकने में काम करता है हर नॉर्मल इंसान के अंदर, और इसके अंदर जो इम्यूनोथेरेपी है कुछ इम्यूनिटी की जो पाथवे बोलते हैं इनको, यानी कि जो इम्यूनिटी के लिए केमिकल बनते हैं जो सेल्स में या कोशिकाओं में काम करते हैं, जो अपने को वहाँ गड़बड़ नहीं होने देते, और यदि उसमें वो पकड़ते हैं हम टेस्ट के द्वारा कि यदि वो है गड़बड़ तो फिर हम उसके अगेंस्ट जो थेरेपी है या इंजेक्शन है वो दें, तो इसलिए उसको इम्यूनोथेरेपी,
1: जी
0: जो इम्यूनिटी बढ़ा के अपने कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करे,
1: जी डॉक्टर
0: इसलिए
1: साहब।
0: इम्यूनोथेरेपी।
1: जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक ये बताइए, जैसे कि कैंसर है तो कीमोथेरेपी को लेकर लोगों में बहुत डर रहता है, तो उसमें क्या बदलाव आया है? पहले जो कीमोथेरेपी होती थी और अब के समय में, उसमें कुछ खास बदलाव आया है?
0: देखिए अलग से तो नहीं, नए नए कीमोथेरेपी एजेंट कहें या नई नई मेडिसिन आई हैं, बहुत सी मेडिसिन में जो पुरानी मेडिसिन के जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते थे वो
1: जी
0: कम है, काफ़ी कम है, लेकिन हाँ यदि कहें तो कोई भी दुष्प्रभाव विहीन नहीं है, मतलब सबका एक साइड इफ़ेक्ट तो है। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट जैसे बाल झड़ना,
1: बाल झड़ना जी।
0: यानी कि इसको ऐसे समझे जो शरीर में बढ़ रही है सेल्स, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, अपने मुंह की ये जो झिल्ली होती है
1: छाले
0: म्यूकोजा
1: हो
0: है,
1: जाते हैं कई
0: हाँ
1: बार
0: वो
1: मुंह में।
0: इसीलिए छाले होते हैं कि वो जो बढ़ रहा है ना उस पे काम करते हैं, वो सेल्स भी डेड होती है ट्यूमर सेल्स के साथ साथ, तो इसलिए वहाँ पे भी इसका इफेक्ट है, पर जो बाल झड़ते हैं वो वापस आ जाते
1: वापिस
0: हैं,
1: आ जाते
0: हाँ
1: हैं जी।
0: परमानेंट लॉस नहीं होते। और जी घबराना, उल्टी होना, शरीर में कमजोरी लगना कईयों को रहता है, पर उसकी मेडिसिन होती है रूटीन में ली जाती
1: तो
0: है।
1: ये सभी तरह के पेशेंट पे होता है
0: हो
1: या?
0: सकता है किसी को कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये सामाजिक भ्रांति के तौर पे ज़्यादा है कि जिस किसी का भी वो जो अनुभव होता है वो उसको बढ़ा चढ़ा के
1: आधार पे बता
0: एक
1: देते
0: एक
1: हैं।
0: लेमैन आदमी या एक आम आदमी उसको, अरे मेरे तो ये हुआ, तो वो ज़्यादा डर ज़्यादा बैठता है। हाँ और बाल झड़ने के लिए भी अभी एक नई चीज़ें, स्कैल्प कूलिंग टेक्निक बोलते हैं आजकल,
1: जी
0: धीरे धीरे वो थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, यहाँ अभी तक अपने नहीं अभी कनेर में, ताकि वो यदि कराएं तो उसके बाल झड़ने की समस्या भी वो
1: नहीं रहेगी।
0: नहीं रहती या बिल्कुल ही कम है, झड़ते नहीं है।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी।

0: दी डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला जारी रखेंगे श्रोताओं। इसी बीच हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि आप इतनी गंभीर बीमारी के पेशेंट से डील करते हैं तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: सारा दिन मरीजों के बीच में रहते हुए कभी कभी खुद पे भी
0: थोड़ा
1: बोरियत
0: स्ट्रेस
1: या स्ट्रेस तो नहीं
0: हाँ।
1: लेकिन हाँ सब इमोशनली भी लोग बातें करते हैं हमसे।
0: जी
1: संगीत का शौक भी है और हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी गाने बजते रहते हैं और ये भी एक प्रूवन चीज है कि जब गाने बजते हुए या संगीत सुनते हुए सर्जरी होती
0: जी
1: है
0: थेरेपी के रूप में
1: ये
0: आप
1: ज्यादा एफिशिएंट होती है,
0: जी
1: कम टाइम लगता है,
0: जी
1: ये दुनिया में प्रूवन है। तो जहां भी बड़े सेंटर होते हैं वहां संगीत
0: तो
1: जरूर
0: डॉक्टर
1: बजे।
0: साहब आप अपनी पसंद का एक गीत हमें बताएं।
1: बिल्कुल जरूर, मेरी पसंद के गीत में अभी नए जो एक बहुत अच्छे सा है, जो भेजी थी दुआ।

0: कैंसर का जैसे जल्दी पता लगाना हो तो इसके लिए कोई और नए आधुनिक टेस्ट उपलब्ध है?
1: देखिए, कैंसर का अलग से ऐसा कोई अपन कहें तो टेस्ट करें रूटीन में, चल जैसे रूटीन टेस्ट की तरह से करें तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है।
0: जी,
1: जो कैंसर में जो अपन करते हैं उसको एक बोलते हैं स्क्रीनिंग,
0: स्क्रीनिंग
1: यानी
0: जी,
1: कि जो नॉर्मल लोगों हैं या जहाँ पे ऐसी जनता है जहाँ की पॉपुलेशन में उस कैंसर होने के चांस ज़्यादा हैं, तो फिर हम स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो कुछ करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है,
0: जी
1: स्तन कैंसर, उसमें मेमोग्राफी है,
0: जी जी
1: ये बहुत एक्सरे है, कहीं भी जाके आजकल वेन भी आती है, कहीं भी सोसाइटी में जाके भी किया जा सकता है, और वहाँ जो शुरुआती बनने का चांस होते हैं या वहाँ शुरुआत है वहाँ पकड़ा जा सकता
0: जी
1: है उसको इवन।
0: जागरूकता जरूरी
1: हाँ,
0: है
1: और
0: जी।
1: ऐसे ही जैसे प्रोस्टेट कैंसर के अंदर है, एज के साथ में PSA टेस्ट कराना या चेक कराना वो है, लेकिन ये हर जगह हर अंग के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कोई शराब का सेवन करता है, तंबाकू का, बीड़ी, तो उनको अपना मुंह का चेकअप कराते रहना चाहिए। तो वैसे ही महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कभी भी थोड़ा सा ब्लीडिंग का चांस हो या माहवारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग हुई हो तो जरूर चेक कराना।
0: जी
1: तो अपन टाइम में पकड़ेंगे तो उसको जितना जल्दी हो
0: जी
1: ट्रीट करेंगे
0: शुरुआती
1: तो
0: अवस्था में अगर
1: हाँ,
0: पता चल जाए तो पूरी
1: तो
0: तरह से ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब, है ना?
1: बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और जनरली एक बहुत एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हम मेडिकल साइंस में ज़्यादातर जितने भी कैंसर हैं हम बात करते हैं 5 ईयर सर्वाइवल, यानी 5 साल कितने लोग उस स्टेज में ठीक रहते हैं। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें, सर्वाइवल जिसको कहते हैं, ये भी
0: जी
1: बढ़ रहा है। हम और जितना समझ बढ़ रही है, जितने रिजल्ट बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, इससे और भी लाभ मिल रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये जरूर बता दें कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें उनको नजरअंदाज नहीं करना है?
1: देखिए, अलग अलग अंग में, अलग अलग कैंसर में अलग अलग लक्षण हैं। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन या अपन इंडिया भारत में माने, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू या तंबाकू उत्पाद, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, खैनी, किसी न किसी रूप में हर
0: सेवन
1: भारत
0: करते हैं लोग
1: के
0: जो है।
1: हर प्रांत में इसका सेवन होता है, तो उसके कैंसर होने के सबसे ज़्यादा लगभग 40% कैंसर मुंह के या मुंह गले के होते हैं। तो कहीं भी मुंह

0: में कोई छाला हो जो भर नहीं रहा 1 महीने से,
1: हम्म,
0: कोई दांत लू ढीला होकर अपने आप गिर गया हो, गर्दन के अंदर कोई गांठ या गिल्टी या लिम्फ नोड जैसे बड़ा हुआ हो, किसी की आवाज बदल रही हो, मुंह के अंदर जीभ में पीछे की तरफ दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा, गोली रूटीन में लंबा टाइम हो रहा है, तो जरूर चेक कराएं। और ब्रेस्ट के अंदर जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कॉमन है, तो उसके अंदर स्तन के कैंसर में यदि कोई ऐसी गांठ हो जिसमें दर्द नहीं हो रहा हो, तो उसको तो जरूर चेक कराना है। हो सकता है हम उसको पहली स्टेज में पकड़ें और
1: जी
0: हम 90-100% रिजल्ट वाले रहें।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर लक्षण शुरुआत में पता चल जाए तो बचाव संभव है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बताइए, क्या सभी तरह के जो कैंसर हैं वो वंशानुगत होते हैं?
0: वंशानुगत का मतलब जनरली हम कोई भी बीमारी हो ये मानते हैं कि जो बीमारी अगली पीढ़ी में जाए,
1: जी
0: ठीक है। सारे कैंसर नहीं होते,
1: हम्म,
0: वंशानुगत कैंसर कुछ ही होते हैं जिसमें किसी में जीन का ऐसा बदलाव आ गया जो आगे भी जाएगा तो उसमें कैंसर होने के चांस बढ़ेंगे। कुछ एक जीन चेंज ऐसे हैं ब्रेस्ट कैंसर में हैं कि वो जाते हैं आंत के कैंसर में, पर वो सारे नहीं होते। यदि किसी के परिवार में हुआ है कैंसर तो अपन वो आजकल वो टेस्ट करा सकते हैं, वो यदि पॉजिटिव नहीं है तो अगली पीढ़ी में उस कैंसर के जाने के चांस नगण्य है।
1: जी
0: तो ऐसा नहीं है कि सारे हैं, वो मुश्किल से 1-2% भी कैंसर नहीं है जो है। और उसमें भी यदि पता लग जाए अपने को कि भाई ये वंशानुगत वाला कैंसर है किसी परिवार में,
1: जी
0: तो हम जो है आगे वाली पीढ़ी में भी वो टेस्ट करा सकते हैं कि वो चेंज है तो वो सावचेत रहे, कभी भी हो सकता है। वो नहीं है तो वो थोड़ा निश्चिंत हो सकता है कि भाई उसमें के अंदर आने के चांसेस बहुत कम।
1: जी जैसा कि आपने बताया कि तंबाकू और शराब का जो सेवन है वो कैंसर को न्योता
0: बाहर
1: देने
0: नहीं
1: जैसी बात है, तो क्या
0: न्योता,
1: वाकई में जो लोग तंबाकू का या शराब का सेवन करते हैं उनको कैंसर होगा ही होगा?
0: देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल है। सबको यूं लगता है, बहुत बार आते हैं साहब वो आदमी तो जिंदगी भर खाता रहा, कभी हमने तो उसके नहीं देखा। देखिए एक आम आदमी को यदि अपन 100 आदमी लें और ये माने कि उनमें 2% चांस है कि मुंह का कैंसर हो, तो जो तंबाकू सेवन करने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, स्मोकिंग करने वाले हैं और एल्कोहल लेने, उनको वो 30-40% पे चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारों का नहीं होगा। वो वही फिर वही बात आएगी कि आप हर इंसान का शरीर अलग है,
1: जी
0: उसकी इम्यूनिटी अलग है, उसकी जो वास्ट प्रोडक्ट कहें या जो भी है उसको डिस्पोज करने या उसको बॉडी से बाहर निकालने की कैपेसिटी अलग है। और कुछ एक लोगों की अपन बात करें संरचना या कोशिकाओं की संरचना या जीन की ऐसी है कि वो उस कैंसर के लिए, यदि हम स्मोकिंग लेंगे तो वो कैंसर के लिए उनको जल्दी होने के चांस है।
1: जी
0: तो तभी कुछ एक लोगों में तो बहुत कम एज में भी आ जाता है और कुछ में 60-70 साल में भी नहीं होता है। तो ये रहता है, ऐसा नहीं है कि सब में होगा। हाँ उसमें कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा
1: अधिक
0: होंगी,
1: रहती है। जी
0: एक आम जनता के मुकाबले बहुत रहेगी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक ये सवाल है कि जैसे कई बार कैंसर का इलाज ले लिया किसी पेशेंट ने, तो उसके बाद वो पूर्णतः ठीक है या उसको वापस से डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कितने समय में दिखाना चाहिए, और मरीज को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: आपने अच्छा सवाल किया है। बहुत बार क्या होता है, जैसे ही एक बार ट्रीटमेंट का सारा होता है, जैसे सर्जरी होगी, कीमो होगी या रेडिएशन होगी,
1: जी
0: सारा जैसे ही पूरा हुआ तो आदमी को बहुत बार ये लगता है मैं ठीक हूँ,
1: ठीक
0: क्या
1: हूँ।
0: जरूरत है
1: जी
0: जाने की।
1: जी
0: नहीं, ये गलत धारणा है। अब हर मरीज को, वैसे तो जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है चिकित्सक, वो बताएगा कि आपको कैसे कैसे फॉलोअप में, इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट फॉलोअप,
1: जी
0: आपको हमेशा रेगुलर फॉलोअप में रहना है। एक आम बात करें तो पहले 2 साल में हम रूटीनली 2-3 महीने में एक चेकअप होना चाहिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कोई बड़े सीटी स्कैन पैट स्कैन हो, एक सबसे पहले डॉक्टर सिर्फ देखता है कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है, चेक करता है कि कोई वापस आने के चांस तो नहीं है, और फिर कोई ज़रूरत होता है तो उसके हिसाब से टेस्ट कराया जाता है।
1: जी
0: ऐसे ही हर बार फिर टाइम बढ़ा के 5 साल निकल जाते हैं, तो जनरली साल 6 महीने साल में एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए। वो अलग अलग कैंसर में अलग अलग है, हाँ, पर चिकित्सक सलाह बंद नहीं करे,
1: जब तक कि डॉक्टर ना
0: ना
1: कहे।
0: कहे
1: जी
0: जनरली, ना नहीं, फिर ये होता है साल में एक बार तो आप
1: दिखाएं,
0: अच्छा रहता है कि अपन, क्योंकि एक बार हुआ है तो दोबारा भी कहीं ना कहीं या नई
1: होने
0: जगह
1: की
0: होने की
1: संभावनाएं
0: संभावना होती
1: रहती
0: है,
1: है।
0: बेहतर रहता है कि उनको चेक कराया जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बहुत लंबे समय से अपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब।

0: ये बताएं कि बीकानेर के लिए क्या नवाचार कर रहे हैं आप?
1: देखिए, जैसे दुनिया में सब जगह बढ़ रहा है,
0: जी
1: वैसे वैसे बीकानेर में भी तकनीकें बढ़ रही है। अपना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी अच्छा कैंसर रीजनल कैंसर सेंटर है, और हम बाहर भी जो प्राइवेट में भी हैं, धीरे धीरे करके हम जितनी सुविधाएं इस शहर और शहरवासियों के लिए कर सकें और आसपास के लिए बढ़ा रहे हैं। हम भी अपना एक नांगल कैंसर इंस्टीट्यूट पूरा अलग बनना शुरू हो गया हमारा,
0: जी
1: 200 बेड रहेगा, 200 से ऊपर। उसमें सारे रोबोटिक रेडिएशन की नई से नई तकनीकें, वो सारा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हो और यहाँ के लोगों को सब मिले और यहीं के यहीं मिले, ताकि बाहर ना जाए, शहर का शहर में हो
0: जी जी
1: तो बहुत अच्छा रहता है। अपने भी साथ होते हैं इलाज में, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक
0: जी
1: बहुत बड़ा रहता
0: परिवार
1: है
0: का, जी
1: परिवार का
0: जी
1: और रिश्तेदारों का।
0: जी डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश यही देना चाहूँगा कि अपनी जीवन शैली जितनी हो सके स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, और कहते हैं ना कि बदलाव सबसे पहले अपने से शुरू होता है और घर से शुरू होता है। तो जो माइक्रोप्लास्टिक का मैंने एक बात किया,
0: जी
1: तो जितना हो सके उससे अपने को ध्यान रहें और दूर रहें, या बदलाव कर लें घर में अपना जो भी बर्तन या जैसे भी हैं। दूसरा, खाने की चीज़ों में जितनी डब्बे बंद और प्रिजर्वेटिव फ्री हो
0: जी
1: या जो ताज़ा हो वही खाएं घर में, और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और यही कहूँगा, जितना हो सके नशे से दूर रहें और खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
0: श्रोताओं, याद रखिए, कैंसर से डरना नहीं बल्कि समय पर जांच, सही जानकारी और उचित उपचार ही सबसे बड़ा बचाव है। डॉक्टर जितेंद्र नागल, आपने कैंसर के इलाज में नई संभावनाएं और आधुनिक तकनीकों के बारे में बहुत सरल और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नागल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर।
3: बीकानेर में कैंसर के इलाज का एक विश्वसनीय नाम नांगल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
4: जहां 8,000 से भी अधिक सफल सर्जरी के अनुभव के साथ
3: एम्स दिल्ली के पूर्व चिकित्सक और वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नांगल के नेतृत्व में मिलता है कैंसर का संपूर्ण समाधान।
4: यहां मुंह, गला, स्तन, फेफड़े, पेट, लीवर, ब्रेन ट्यूमर और हड्डियों सहित सभी प्रकार के कैंसर रोगों का आधुनिक और सटीक उपचार किया जाता है।
3: सही समय पर सही इलाज मिले तो इस जंग को जीता जा सकता है।
4: अपनों के साथ और सेहत के लिए संपर्क करें।
3: नांगल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पता आदर्श कॉलोनी, ट्रैफिक पुलिस थाने के पास, बीकानेर।
4: कॉल करें 9001942443 पर। अब कैंसर से डरना नहीं, उसे हराना है।
3: नांगल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर। जब सुने

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्दी बीकाना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में हर वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: गौरतलब है कि यह भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। इससे पहले 28 फरवरी को पहला और 31 मार्च को दूसरा प्लांट शुरू हुआ था। कैबिनेट में 12 प्लांट स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट के साथ शुरू की गई ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। बालोतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कल उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही देवास पेयजल परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन टनल और बांध कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उदयपुर के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से उदयपुर शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही पिछोला, फतह सागर झीलों के जलस्तर को बनाए रखने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हैं। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें आमजन को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि यहां जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
1: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जल भराव वाले स्थानों की जांच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अब पश्चिमी जिलों तक पहुंच रही है। कल बाड़मेर के चौहटन और गडरा रोड इलाके में तेज बरसात हुई। इसके अलावा बायतू, रामसर और धनाऊ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात होने के समाचार हैं। जैसलमेर में हुई तेज बरसात से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215

15.5 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM चैनल 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे स्वाति शर्मा का गाया ये लोक संगीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश करेंगी अनीता जोशी।

जय हिंद बच्चों, नन्ही मुस्कानों और मीठी आवाज़ के साथ आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम मुकुल, आपकी अपनी अनीता दीदी के साथ। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मस्ती और सीख का गुलदस्ता, कहानियाँ, कविताएँ और नई नई रोचक जानकारी, जिससे बढ़ जाए आपका ज्ञान। और तो बच्चों, आप कान लगाकर दिल से मुस्कुराकर सुनिए अपना कार्यक्रम मुकुल। अब शुरू हो गया है नन्हे सपनों का संसार, जहाँ हर बच्चा है खास और हर पल है उसका प्यारा। तो बच्चों, जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं। तो आइए सुनते हैं हम ये एक हमारी हमको मन की शक्ति देना।

बच्चों आप अभी स्कूल गए थे है ना, तो आपने स्कूल का वातावरण देखा होगा कि कैसा है। बहुत अच्छा और बहुत ही खुशनुमा वातावरण था। जब आपने स्कूल में प्रवेश किया, आपको नए नए दोस्त मिले, सबसे बातें की, कुछ बच्चों के पुराने दोस्त भी मिले, कुछ नए टीचर्स मिले। पर स्कूल में आपने जाते ही क्या देखा कि हमारी धरती, आपका स्कूल का जो गार्डन था वो कितना सुंदर था, है ना। नए नए फूल खिले हुए थे, उन जिनमें खुशबू आ रही थी, तितलियाँ उड़ रही थी, भंवरे गुंजन कर रहे थे, और आपको कितना अच्छा लग रहा था। तो बच्चों जब आप स्कूल में गए तब आपने देखा कि स्कूल का वातावरण

बहुत अच्छा था। और जब आप चल रहे थे तो हरी हरी घास जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो आप समझ गए होंगे कि आज अनीता दीदी कौन सी कविता लेके आई है। जी हाँ बच्चों, मैं आपके लिए आज कविता लेके आई हूँ, हमारी सुंदर धरती। जी हाँ, हरी भरी ये धरती अपनी, हरी भरी ये धरती अपनी, जीवन का सुंदर आधार, पेड़ों की ठंडी छाया में छिपा हुआ है सारा प्यार। नदियाँ कल कल बहती है, गीत सुनाती है प्रकृति के, पर्वत ऊंचे खड़े हुए हैं रक्षक बनकर इस सृष्टि के। फूलों की खुशबू कहती है धरती को स्वर्ग बनाओ, सुना बच्चों, फूलों की खुशबू कहती है धरती को स्वर्ग बनाओ, पेड़ लगाकर जल बचाकर अपना सुंदर फर्ज निभाओ, धुआं प्रदूषण दूर भगाओ, नीला अंबर फिर मुस्कुराए, पक्षी गाए मीठे स्वर में, हरियाली है मन को भाए, आओ मिलकर शपथ ले ये, प्रकृति का सम्मान करेंगे, धरती माँ की रक्षा करके सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। क्यों बच्चों, कितनी और प्यारी सुंदर कविता है, वो हमारी धरती माँ से है। हमें भी अपनी धरती का ध्यान रखना है और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाना है जिनका हमें ख्याल रखना है। तो आइए सुनते हैं हम ये प्यारा प्यारा बाल गीत।

0: हम
1: बच्चों, अभी तो आपने ये सुना बाल गीत। अब हम बात करते हैं आज की कहानी की। आज के लिए मैं एक कहानी लेके आई हूँ जो आपको एक अच्छी सीख भी देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। तो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है हमारा अंकों का खेल। तो बच्चों, आर्यन और समीर बचपन के दो पक्के अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। वैसे तो दोनों में गहरी और बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा पास आती, दोनों के बीच में एक अनकही होड़ शुरू हो जाती। समीर को गणित बहुत पसंद थी तो आर्यन को विज्ञान। दोनों के मन में बस यही चलता था कि इस बार क्लास में कौन ज़्यादा नंबर लेके आएगा। परीक्षा की तारीखें घोषित हुई। समीर ने अपनी मेज पर किताबों का ढेर लगा लिया। उसने शाम को पार्क में खेलना बिल्कुल बंद कर दिया और दिन रात बस पढ़ाई में ही लगा रहता था। उधर आर्यन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगता। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर इतनी घबराहट थी, उन्हें ये लगता था कि कहीं ये नंबर ज़्यादा ना लेके आ जाए, तो समीर को लगता था कि आर्यन ज़्यादा नंबर नहीं लेके आ जाए। उन्होंने आपस में बात करना भी बंद कर दिया। स्कूल में भी जब वे एक दूसरे से मिलते तो सिर्फ यही पूछते कि तुमने कितना याद किया। उन दोनों का एक और दोस्त था जिसका नाम था चिंकी। चिंकी को नंबरों से ज़्यादा परवाह नहीं थी, बस वो तो अपनी मस्ती में रहता, खूब खेलता कूदता, मन होता तो पढ़ाई करता था। एक दिन चिंकी ने मजाक में कह दिया, भाई समीर, सुना है इस बार का पेपर बहुत कठिन आने वाला है, तुम दोनों की तो इस बार कड़ी परीक्षा होने वाली है। चिंकी की ये बात सुनकर समीर और आर्यन की चिंता और बढ़ गई। वो और टेंशन में हो गए। वे दोनों अपनी अपनी किताबों में ऐसे डूबे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वे एक अच्छे और कितने अच्छे दोस्त हैं। परीक्षा वाले दिन दोनों स्कूल पहुंचे। दोनों के चेहरे पर तनाव था। समीर बार बार अपने फार्मूले दोहरा रहा था और आर्यन अपनी कॉपी के पन्ने उलट पुलट कर रहा था। जैसे ही हाथ में पेपर आया, समीर को कुछ सवाल बहुत मुश्किल लगे। वो घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। आर्यन का भी यही हाल था। जैसे तैसे दोनों ने अपनी परीक्षा पूरी की। परीक्षा खत्म होने के बाद जब दोनों एक दिन मैदान में मिले तो समीर ने बुझे मन से कहा, यार आर्यन, मेरा पेपर तो वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था। तुझे तो लग रहा होगा कि मेरे नंबर कम आएंगे। तो आर्यन ने भी वापस उदास होकर कहा, समीर, मेरा भी यही हाल है भाई। मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। चिंकी वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और हंस भी रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं ताकि दिमाग थोड़ा ठंडा हो और उसको थोड़ी ठंडक मिले। रिजल्ट के दिन जब लिस्ट लगी तो पता चला कि समीर और आर्यन के नंबरों में बहुत ही कम अंतर था। समीर के नंबर थोड़े ज़्यादा थे, पर उसे वैसी खुशी नहीं हुई जैसे हमेशा हुआ करती थी। उसने देखा कि आर्यन एक कोने में चुपचाप खड़ा है। समीर को अचानक ऐसा

महसूस हुआ कि इस होड और ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में उसने पिछले कई महीने से अपने सबसे अच्छे और पक्के दोस्त से ठीक से बात भी नहीं की होगी। समीर दौड़कर आर्यन के पास गया और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, यार आर्यन, नंबर तो आते जाते रहेंगे पर पिछले एक महीने से हम साथ में खेले नहीं। मुझे बस वो याद आ रहा है, ज़्यादा नंबर लाने से ज़्यादा ज़रूरी मेरा तेरा साथ होना है। आर्यन की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए समीर का हाथ थाम लिया। चिंकी ने अपनी गेंद निकाली और चिल्लाया, चलो भाइयों, बहुत हो गई है पढ़ाई, अब सिर्फ खेल होगा। तीनों दोस्त फिर से उसी पुरानी मस्ती के साथ मैदान की ओर दौड़ पड़े। उन्हें समझ आ गया कि नंबरों की होड़ से कहीं ज़्यादा कीमती उनकी दोस्ती और साथ बिताया हुआ समय है। ये जान गए थे कि अंकों के इस खेल में कोई नहीं जीता, जीता तो उनकी कौन, उनकी दोस्ती। तो बच्चों, पढ़ाई आवश्यक है परंतु स्वस्थ रहने के लिए और स्वास्थ्य के साथ साथ मिलकर दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है और यही हमारी सच्ची दोस्ती है। तो बच्चों, पढ़ाई के चक्कर में हमारे जो एक पक्का रिश्ता है दोस्ती का, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये मुझे ज़रूर बताना। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

बच्चों, हम हमेशा हमारे मुकुल कार्यक्रम में अच्छी अच्छी रोचक जानकारी, कुछ कहानियाँ और कुछ चर्चाएं लेके आते हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी इस मुकुल की छोटी सी बगिया में हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में आपसे बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, जिसका नाम लेते ही दिल में ममता और सेवा का भाव जाग उठता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मदर टेरेसा की, जिन्हें पूरी दुनिया मदर यानी माँ कहकर बुलाती है। पता है बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म तो बहुत दूर एक दूसरे देश में हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारे भारत को अपना घर बनाया और पूरी दुनिया को पूरी जिंदगी गरीब, बेसहारा और बीमार लोगों के सेवा में लगा दी। जो हमेशा कहती थी कि अगर आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी एक की ही मदद करके देखो। कितनी बड़ी और सच्ची बात है ना। हमें भी अपने स्कूल में, अपने घर के आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी छोटी सी ही सही पर हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, और मदर टेरेसा जो थी वो स्कूल की शिक्षा के बारे में भी बहुत अच्छी बात बोलती थी। वो कहती थी कि हमें हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, और उन्होंने बच्चों को शुरू से ही पढ़ना सिखाया, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ये बात भी बोली। तो वो एक स्कूल में टीचर थी, वो जानती थी कि शिक्षा यानी कि पढ़ाई ही वो एक उजाला है जो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो बच्चों, अब पता चला कि मदर टेरेसा जो थी वो बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी, वो बच्चों को पढ़ाती थी। उन्होंने कहा, शिक्षा का जो ज्ञान है वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। अगर बच्चों के पास शिक्षा होगी तो वो कहीं पे भी नहीं रुकेंगे और वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और शिक्षा ही एक ऐसी थी जो हम उन्हें हर जगह सफलता दिलाती थी। तो बच्चों, मदर टेरेसा की जो ये कहानी है जो आज मैं आपको सुना रही हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी है। तो मदर टेरेसा जो थी वो बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित रहती थी। उनका ये कहना था कि हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान कभी भी कहीं नहीं जाता। अगर हमें हमेशा बैठ के किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, हमें हर किताब से कुछ न कुछ तो ज्ञान मिलता ही है। ये थी मदर टेरेसा की कहानी, जो वो शिक्षा को बहुत महत्व देती थी, और बच्चों हमें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

बच्चों अक्सर हम मूवी देखते हैं और हम जब मूवी देखते हैं तो हमें इसका अंदाज़ हम अक्सर ये सोचते हैं ये ट्रेलर कैसे हुआ, ये टीज़र कैसे हुआ। तो बच्चों टीज़र और ट्रेलर इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हमारे दिमाग में जो बात चलती है वो हम सोच रहे हैं। टीज़र क्या है बच्चों? टीज़र किसी फिल्म का एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो होता है। ये ट्रेलर से छोटा होता है और फिल्म की सिर्फ एक झलकियाँ दिखाता है। टीज़र आमतौर पर ट्रेलर से पहले रिलीज किया जाता है जिसकी अवधि 10 से 15 सेकंड होती है और ये 1 मिनट ही होती है। हालांकि कई बार ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है। टीज़र में हम फिल्म की कहानी या पूरी जानकारी नहीं दी जाती। कई बार इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या रिलीज़ डेट जैसी जानकारी भी नहीं होती। ये तो था टीज़र के बारे में। और ट्रेलर हो क्या होता है? ट्रेलर फिल्म का एक लंबा प्रीव्यू वीडियो होता है जिसमें फिल्म की कहानी, किरदार और माहौल की झलकियाँ दिखाई जाती है। आम तौर पर ट्रेलर में फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्य, संवाद और बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है उसको शामिल किया जाता है, जिसमें है जो दर्शक है जो फिल्म की कहानी का कुछ अंदाज मिल जाता है। और बच्चों हमें थोड़ा सा यूँ रहता है कि अरे इसके आगे क्या होगा, हम अक्सर ये सोचा करते हैं। ट्रेलर की अवधि 2 से 3 मिनट के बीच हो सकती है। इसे फिल्म के प्रसार के लिए रिलीज़ किया जाता है ताकि दर्शक फिल्म देखने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो जाए। ट्रेलर में अक्सर फिल्म की रिलीज डेट, डायरेक्टर, कलाकार और प्रोडक्शन से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। तो बच्चों ये तो थी आज की हमारी रोचक जानकारी। अब हमारे मुकुल कार्यक्रम में मैं आपसे फिर मिलूंगी अच्छी अच्छी कहानियाँ, रोचक जानकारी और कुछ कविताओं के साथ। तब तक जय हिंद। अपनी अनीता दीदी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुकुल, इसे आज आपके लिए पेश कर रही थी अनीता जोशी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है लुका छुपी। स्वर अखिल, ध्वनि भानुशाली और भृगु पराशर के हैं। इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
6: फसा। अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: लीजिए कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है लुटेरा। स्वर मनाली ठाकुर का है। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: पे पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
2: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
1: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1300

0: बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो एक नीति स्पष्ट हो इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे तो कैसे करते थे?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवाल में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है, घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी पे लगा देते हैं और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था गाँव, जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गाँव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गाँव भी हमारा है, ये गाँव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गाँव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गाँव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं गाँव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गाँव समस्त जीव जंतुओं का एक अच्छे तालाब का सभी से

0: निकलकर गांव बनते हैं।
1: आपने अजीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, अब हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजाति

0: या पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश हो के देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथीन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो, ये पर्सनैलिटी के ऊपर है। व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ, व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाएं, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ हैं, जैसे पुराने पेड़ हैं, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं, या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है, जगह में, उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ, देखो अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूँ अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ

0: रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
0: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
1: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
0: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
0: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
1: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
0: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत के नागरिकों यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
0: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 10:55 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: अभी आपने हिना फिल्म का गीत सुना, स्वर था सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर और साथियों का। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत को सुनना चाहते थे सुराणा मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दम्बाणी।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: प्रोग्राम का अगला गीत मेरे महबूब फिल्म से है. स्वर है मोहम्मद रफ़ी का. गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे हैं, संगीत नौशाद का है. इस गीत को सुनना चाहते हैं चुनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज नदीम, नदीन सादाब और एस जाकिर हुसैन बाव. तो लीजिए आप अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत.

लीजिए अब सुनिए बावरसी फिल्म का गीत, स्वर है मन्नाडे असरानी और साथियों के। कैफी आजमी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं बल्लभ गार्डन बीकानेर से LC शहजादा, कमला देवी पंवार, लालचंद पंवार, अरुणा रानी पंवार। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है बारागवाड़ का चौक बीकानेर से ललित छंगाणी, पवन पुरोहित, भगवान दास छंगाणी, मग्नेश्वर ओझा और उनके साथियों ने।

फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए टूटे खिलौने फिल्म का गीत। स्वर है यशोदास का, गीत के बोल कैफी आजमी के हैं, संगीत बप्पी लहरी का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, गीता रानी, सीता रानी, मूलचंद सोनगरा, प्रथम राज, हंसराज, मनोहर लाल सोनगरा, मुकेश आकाश सोनगरा और मिस्त्री सीताराम पंवार।

अभी आपने एक दूसरे के लिए फिल्म का ये गीत सुना। स्वर था लता मंगेशकर और अनूप जलोटा का। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत को सुनना चाहते थे कोटगेट बीकानेर से ओंकार चंद सरपटा, संपत ताराचंद सरपटा, विशाल सनी सरपटा। लीजिए अब सुनिए। नवरंग फिल्म का गीत, स्वर है आशा भोंसले और मन्ना डे का। गीत के बोल भरत व्यास के हैं, संगीत सी रामचंद्र का। इस गीत को सुनना चाहते हैं पाबूबारी बीकानेर से लालचंद जैदिया, सुधा जैदिया, कविता जैदिया, जितेंद्र जैदिया। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही और गौरव शाही ने।

ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का।

कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में है। फिल्म का नाम है रानी रूपमती। इस गीत को लिखा है पंडित भरत व्यास ने और संगीत एस एन त्रिपाठी का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, मोहम्मद रजाक पंजाबगीर, अब्दुल सत्तार, बेबी मुमताज, निसार अली, खातून बेगम और जैतून बेगम।

लीजिए अब सुनिए रामलखन फिल्म का गीत, स्वर अनुराधा पौडवाल का है, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर से मुकेश श्योता, हरीश श्योता, पिंकी श्योता और राकेश श्योता। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर से चंद्रशेखर हर्ष, माया हर्ष, कैलाश हर्ष, टीना हर्ष, आलोक हर्ष और उनके परिवार के लोगों ने।

रामलखन फिल्म में अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

0: बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा महिला जगत। इसमें आज आप बुजुर्गों का सम्मान विषय पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति में बेटियों और बहुओं की कानूनी अधिकार और औषधीय पौधों का महत्व सहित महिलाओं में खून की कमी कारण और निवारण विषय पर भी बातचीत की जाएगी। इसमें आज आप महिला स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आयुर्वेद के संबंध में वार्ता सुनेंगे। वार्ताकार होगी डॉक्टर प्रीति गुप्ता।

शाम 7:30 पे आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टीम 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का सीधा प्रसारण।

शाम 7 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसमें आज आप बाजरा की उन्नत किस्में विषय पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही वृक्षारोपण और वन महोत्सव, बेहतर जल उपयोग के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं और वर्षा काल में पशुशाला की सार संभाल विषय पर भी बातचीत की जाएगी। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे शाम 6:40 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा।

युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर। इसमें आज आप बोलने से पहले सोचें विषय पर आज की बात सुनेंगे, साथ ही विकसित भारत में युवाओं की भूमिका, अपनी विरासत को अपने आज से जोड़ें और वाद्य यंत्र मोरचंग विषय पर भी आज की बात लघु जानकारी दी जाएगी। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार से फिल्म संगीत।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार साथियों हाजिर आया मां वीना अजे जो सिंधी प्रोग्राम खणी तमा सबनी बुदनणन जी आजियाती कया महीने जो पहरो आतवार असा प्रोग्राम रखनायो युवाओं जेला उहे युवा जो असा जे राष्ट्र जे निर्माण में सबिन खा जरूरी कड़ी आइन हन जे तहत असा बुदनासी मनीषा दयानी के साथियों अजा है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिहाड़ो हन ते चर्चा कंदासी मजा मानंदासी सिंधी मिठड़े गीतन जो तचो अज जो प्रोग्राम शुरू था कयूं हिन गीत सा

0: साथियों तमाम बुधी रहा हुआ भगवंती नावाणी ए सतनाम रोरा जी आवाज में यो मिठड़ो गीत
1: साथियों तमाम असानिया सिंधी प्रोग्राम बुधनता चायो पर कदे तमाम दुकान ते आयो कदे ऑफिस में कदे मार्केट निकता आयो त कदे सफर प्या कयो त रेडियो सेट के मिस कंदा आयो हन पर हानी सिंधी प्रोग्राम बुधन जी राह में इंदड़ सब मुश्किलों आसान करे रयो आहे तवांजी हथ में झलल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल हाँ यो मोबाइल तवांखे असान्या सिंधी प्रोग्राम बुधाए सगंदो दुनिया जे कहें भी कुंड में दुबई में हुजो स्पेन में अमेरिका में या अफ्रीका में हर जगह ते तवां बुधी सगंदा पहंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तवां के करनो बस एत्रो ही आहे त जिए तवां ब्या एप्स डाउनलोड कंदा आयो बस इए ही प्ले स्टोर ते वन्यो ए सर्च वारी जगह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज ऑन एयर ए उन्हें के इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तवां के मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ही हेठ प्रसार भारती जो लोगो नजर इंदव ए तवां के उन्हें के ओपन करनो आहे ओपन कंदा त सामू पहरी खाबे पासे लाइव रेडियो ए साजे पासे लिसन न्यूज लिखल नजर इंदव तवां लाइव रेडियो के क्लिक कंदा त उते एक लंबी फहरिस्त नजर इंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रन जी तवां के उते ही सबनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखल पढ़ण में इंदव सर्च में तवां जी जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ब चैनल्स नजर इंदव एक विविध भारती जयपुर यानी VBS ए बियो हवा महल छपियल नजर इंदड़ असंजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अच्छी पौतासी सही जगह ते हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तवां उधी सगंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सब प्रोग्राम

0: सिंधी प्रोग्राम बुधी सगंदा मंगल विस्पत ए आर्तवार जी डी डी जो 12:10 ते त सामिन बुधना रहो बिना नागा असंजा सिंधी प्रोग्राम पहंजे मोबाइल ते मंगल विस्पत ए आर्तवार जी डी में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गद।
1: युवाओं के योगदान बिना कहड़ो देश सक्षम कोन थींदो आहे ऐं जे देश में सुजाग युवा आहिन उनके विकसित थियण सा केर भी नथो रोके सके त देश निर्माण में युवा केतरो योगदान करे था सगन हिन अनुमान ते मनीषा दयानी जा विचार बुधूं था।
2: साथियों एक युवा पंहिंजे राष्ट्र जे निर्माण में कीअं योगदान ॾिए थो इहे त एक युवा ही तव्हांखे ॿुधाए थो सघे। मुंहिंजो त इहो चवणु आहे त अॼु पंहिंजे भारत जे निर्माण में सभिनीनि युवाउनि जो अमूल्य योगदान आहे। चाहे कहिड़ी बि दिशा हुजे अॼु जो नौजवान हर तरह सां पंहिंजे देश जे निर्माण में पंहिंजो सॼो योगदान ॾिए पियो। योगदान जी सभिनीनि खां वॾी झलक हुननि जी जागरूकता ऐं निडर स्वभाव में ॾिसण में अचे थी। अॼु जी युवा पीढ़ी पूरी तरह सां जागरूक आहे। हुननि खे ख़बर आहे त हुननि जा कहिड़ा अधिकार आहिनि ऐं जॾहिं हुननि जे अधिकारनि जो उल्लंघन थिए थो त हुननि खे हीअ बि ख़बर आहे त उहे पंहिंजे अधिकारनि जे लाइ आवाज़ कीअं था खणी सघनि। अॼु जो युवा सही ऐं ग़लति जो फ़ैसिलो करण में बि पूरी तरह सां सक्षम आहे ऐं पंहिंजे निडर स्वभाव सां ऐं पूर्ण आत्मविश्वास सां रूढ़ीवादी सोच खे बदिलण जी बि क़ाबिलियत रखनि था। हींअर असांजे भारत जा नौजवान भारत खे हिकु नई दिशा ॾेखारे रहिया आहिनि ऐं रूढ़ीवादी ख़्यालनि खे भी नकारन पिया। असा यानी भारत जा नौजवान सभिनी परंपराओं के सम्मान दियूं था सजे दिल से दियूं था जेका भी असांजा वड़ा असा के बुधायन था असा हुनन जो विरोध न था कयूं ऐ न ही पंहिंजे राष्ट्र जे विरोध में आयूं। असा रुगो अड़ी परंपराओं ऐ अड़े विचारन जो विरोध था कयूं जेका रुगो अंधविश्वास आहिनि। जान अनजान अड़ा ही अंधविश्वास जेका असांजे भारत जी जूनी नींव के कमजोर करन था ऐं राष्ट्र जे निर्माण में बाधक थियन था। पर हा असा नौजवान पंहिंजे परिवार ऐं पंहिंजे राष्ट्र जो दिल से सम्मान करूं था। हीअं का नाहे कि हिन आधुनिक दौर में असा नौजवान ऐं युवा पीढ़ी पंहिंजी परंपराऊं पंहिंजा संस्कार ऐं पंहिंजी संस्कृति के पूरी तरह सां विसरी विया आहियूं। पर मां हीअं ज़रूर थी चई सघां त पंहिंजी जागरूक सोच सां अॼु जे नौजवाननि में सवाल करण जो हिकु अलॻि ई जज़्बो आहे। अॼु जी युवा पीढ़ी अंधविश्वास में विश्वास रखी करे कहिड़ी बि ॻाल्हि ऐं कहिड़े बि वीचार खे अखियूं पूरे करे मञण नथो चाहे। हू हुननि खे पूरो सोची समुझी ऐं परखी करे ई मञण पसंदि कंदी आहे। युवाउनि जी हिन सोच जे करे घणेई समाज वारा हुननि युवाउनि जो विरोध कंदा आहिनि। पर हीअं त सच आहे त हुननि जा वीचार असांजे भारत जे निर्माण ऐं विकास में सहयोग ॾियनि था। हिन जे अलावा यदि असां आर्थिक तौर सां बि ॾिसूं था तॾहिं बि असांजी युवा पीढ़ी आर्थिक तौर ते बि असांजे राष्ट्र जी अर्थव्यवस्था में ऐं निर्माण में योगदान ॾिए थी ऐं भारत खे हिकु बहितरु स्थान ठाहिण में पंहिंजो मूल्यवान सहयोग ॾिए थी। अॼु पाण सभी ॼाणियूं था त असांजे राष्ट्र जे निर्माण ऐं विकास जी हिकु अहम सीढ़ी आहे भारत जे माण्हुनि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वधाइण ऐं अॼु जो नौजवान ॿियो कुझु करे या न करे पंहिंजी जीवनचर्या ते हू सॼो ध्यान था ॾियनि। हुननि जे जीवन जो हिकु हीअं सपनो ज़रूरु हूंदो आहे त हू सुठो पैसो कमाइनि, पंहिंजो पाण जो घर हुजे, घणियूं सुख सुविधाऊं हुजनि। हुननि जी अखियुनि में जेका ढेर सारा सपना आहिनि हू सभु पूरा थियनि। बस हू हिन ही दिशा में पंहिंजा कदम वधाइनि था ऐं अल्टीमेटली हुननि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वधे ही थो। ऐं हीअं बि असांजे भारत असांजे राष्ट्र जे निर्माण ऐं प्रगति में बि सहयोग ॾिए थो। अॼु जा नौजवान ऐं युवा पीढ़ी शिक्षा जी अहमियत खे बि बखूबी सम्झनि था ऐं हुन शिक्षा जो इस्तेमालु देश ऐं समाज जे भले लाइ करनि था। हिन तरह सां युवा आर्थिक ऐं सामाजिक तौर ते पंहिंजे राष्ट्र जे निर्माण में पंहिंजो महत्वपूर्ण योगदान ॾियनि था। असां सभिनीनि खे ख़बर आहे त कहिड़ी बि राष्ट्र जी सफलता जो आधार हुन राष्ट्र जी युवा पीढ़ी ऐं हुननि जी उपलब्धियूं थींदियूं आहिनि। हिकिड़े राष्ट्र जो भविष्य युवाउनि जे विकास ते बि निर्भर करे थो। हिन करे युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाइनि था। कहिड़े बि

0: राष्ट्र में रहण वारा माण्हू ई हुन राष्ट्र जे विकास ऐं प्रगति जे लाइ ज़िमेदार थींदा आहिनि। ऐं हिकिड़े राष्ट्र जी अधिकतम संख्या त नौजवान ई थींदा आहिनि। ऐं असांजे ऐतिहासिक समय सां ई ॾिसण में ईंदो आहे त असांजे राष्ट्र जे लाइ घणेई परिवर्तन, विकास, समृद्धि ऐं सम्मान जे लाइ नौजवान शामिलु थींदा आहिनि। ऐं हिकिड़ी गर्व जी ॻाल्हि आहे त अॼु जा नौजवान न रुगो पंहिंजे राष्ट्र में पंहिंजो ऐं पंहिंजे परिवार जो नालो रोशन करनि था, पर विदेशनि में बि पंहिंजे देश जो, असांजे भारत जो नालो रोशन करनि था। हीअ हिन ॻाल्हि जो सबूत आहे त अॼु जे युवा में घणी ई प्रतिभा आहे। यदि हुन खे मौक़ो मिले त हू नामुमकिन खे बि मुमकिन करण जी क़ाबिलियत रखनि था। केतिरा ही भारत जा युवा आहिनि जेका वॾी वॾी विदेशी कंपनियुनि में ॾाढी सुठी पोस्ट ते आहिनि, अलॻि अलॻि फील्ड में अलॻि अलॻि तरह सां पंहिंजी क़ाबिलियत जो सबूत ॾियनि पिया। ही अहिड़ा भारत जे नौजवाननि जा उदाहरण आहिनि जिन भारत जो नालो विदेशनि में रोशन कयो अथनि। असांजे भारत जो परचम सॼे विश्व में लहिरायो आहे। असांजो भारत, जंहिंखे कॾहिं माण्हू कमज़ोर चवंदा हुआ, जिथे जी ग़रीबी ऐं बेरोज़गारी जे बारे में सॼो विश्व घटि वधि ॻाल्हाईंदो हो, जिथे जी इंटेलिजेंस ते सॼो विश्व सवाल कंदो हो, हुननि सभिनीनि खे जवाब असांजे राष्ट्र जे नौजवाननि पंहिंजी सफलता सां ॾिनो। असां सभिनीनि खे असांजे भारत ते ऐं असांजे भारत जे नौजवाननि ते फ़ख्रु आहे। असांखे फ़ख्रु आहे त असां भारतवासी आहियूं। असांजे राष्ट्र जो नओ रूप, असांजे भारत जी प्रतिभा असांजे नौजवाननि सॼे विश्व खे ॾेखारी। ऐं हाणे विश्व में भारत जी अहिड़ी इमेज आहे त भारत जे माण्हुनि में घणी प्रतिभा आहे ऐं घणी क्षमता आहे। भारत जा माण्हू कहिड़ी बि कला खे जल्दी सिखी था वञनि। संसार में असांजे भारत जे बारे में जेका वीचार हुआ, हुननि खे असांजे भारत जे नौजवाननि बदिले वरितो आहे। हिन करे मूंखे त पूरो विश्वास आहे त असांजे भारत जो भविष्य ॾाढो उज्जवल आहे, छोकी अॼु जे युवा में हू सभु खूबियूं आहिनि जेके राष्ट्र जे विकास ऐं निर्माण में कारगर साबित थियनि थियूं। अॼु जो युवा पढ़ियल लिखियल आहे, पंहिंजी ज़िमेदारियूं बख़ूबी समुझे थो ऐं पंहिंजे देश जे लाइ कुझु करणु बि चाहे थो। हुननि जी सोच ऐं देश प्रेम असांजे भारत खे हिकु नई पहचान ॾींदी। छो त मां बि हिकिड़ी युवा आहियां त मां हीअ चई सघां थी त असां पंहिंजी ज़िमेदारियूं चङी तरह समुझूं था, भले ही असांजे पंहिंजे प्रति हुजे, असांजे परिवार जे प्रति हुजे, समाज जे प्रति हुजे, या भले ही राष्ट्र जे प्रति हुजे। ऐं आख़िर में मां हीअ ई चवंदसि त राष्ट्र जे निर्माण में राष्ट्र जा नौजवान हर तरह सां ऐं हर माध्यम सां पंहिंजो योगदान ॾियनि पिया। जय हिंद।
1: साथियों, तव्हां ॿुधी रहिया हुआ मनीषा दयानी खे। अचो साथियों, हाणे हिन ई कड़ी में ॿुधूं था चित्रेश रीजवानी जा वीचार।
2: कंहिं बि देश जी पहचान ऐं क्षमता जो आकलन हुन जे रहवासियुनि सां कयो वेंदो आहे, ख़ासि करे त युवा वर्ग सां। देश जी ताज़ा राय शुमारीअ सां असांखे इहा ॼाण थी मिले त कुल आबादीअ में नौजवाननि जी तादाद 65% आहे। नौजवाननि जो इहो प्रतिशत देश जी बहबूदीअ लाइ हिकु सुठी ॻाल्हि चई सघिजे थी। युवा जो मतिलबु आहे नओ खून, नई सोच ऐं नओ जोश। हिननि टिन्ही ॻाल्हियुनि जी राष्ट्र निर्माण में ज़रूरत ऐं ख़ासि भूमिका थींदी आहे। हिन रीत असां चई सघूं था त राष्ट्र निर्माण में युवाउनि जी भूमिका ख़ासि थींदी आहे। पहिरियों त असांखे इहो सम्झणो खपे त राष्ट्र निर्माण जो मतिलबु छा थींदो आहे। कोई माण्हू छा थो करे सघे त उहो बि राष्ट्र निर्माण में पंहिंजो सहयोग ॾेई सघे। हिन जो जवाबु आहे त कोई बि माण्हू अगरि पंहिंजो कमु ईमानदारी ऐं निष्ठा सां करे थो त उहो राष्ट्र निर्माण में सहयोग थो ॾिए, चाहे कोई सफ़ाई कर्मचारी हुजे या देश जी सीमा ते बीठल को सिपाही। असां अगरि दुनिया जे अतीत में झांके ॾिसूं त इहो ॼाणींदासीं त दुनिया जे कहिड़े बि क्षेत्र में अगरि क्रांति कई वई आहे त हुन जे पुठियां युवाउनि जो ॾाढो वॾो हथु आहे। चाहे उहा क्रांति आज़ादीअ लाइ हुजे या विज्ञान लाइ या वरी खेतीअ लाइ। जीअं मां पहिरियों चयो त युवा जो मतिलबु आहे नओ खून, नई सोच ऐं नओ जोश। हर युवा में इहा टे शयूं थींदियूं आहिनि, पर हर को हिननि जो बहितरीन इस्तेमालु कोन कंदो आहे ऐं इन करे युवा शक्तिअ जो सॼो उपयोग करण में असां चूकजी वेंदा आहियूं। अॼु युवा पीढ़ीअ खे इहो सम्झणो खपे त जेको बि करणो आहे वक़्तु रहंदे ई करणो आहे, छो त अगरि इहो वक़्तु हीअं ई कटे छॾियो त न त पंहिंजे लाइ न ही पंहिंजे राष्ट्र लाइ कुझु करे पाईंदासीं। अॼु युवा पीढ़ीअ खे

0: दायित्व आहे कि हुन खे राष्ट्र निर्माण में सहयोग ॾियणो आहे छो त अॼु हुन वटि ताक़त आहे ऐं इहा ॻाल्हि सच आहे त ताक़त सां गॾु ज़िमेदारियूं बि ईंदियूं आहिनि हिननि ज़िमेदारियुनि खे पूरो करण लाइ हिकु युवा खे उहो सभु करणो खपे जेको हुन सां अपेक्षित आहे ऐं जेको करण में उहो युवा सक्षम आहे राष्ट्र निर्माण लाइ हर युवा खे पंहिंजी क़ाबिलियत सम्झणी पवंदी इहा ॻाल्हि सच आहे त हर कोई हिकु जहिड़ो क़ाबिल कोन थो थी सघे हर कंहिंजो क्षेत्र बि अलॻि थींदो आहे ऐं हिकु ई क्षेत्र में बि अलॻि अलॻि क़ाबिलियतनि वारा माण्हू थींदा आहिनि अॼु जे युवा जो इहो दायित्व आहे त उहो पंहिंजे अंदरि लिकियल क़ाबिलियत खे ॼाणे ऐं हुन ई अनुसार पंहिंजी पूरी क्षमता जो दोहन कंदो हुओ अॻिते वधे अॼु अगरि युवा अॻिते वधणु चाहे थो त मौक़नि जी भरमार आहे ऐं इहो असांखे न भुलिजणो खपे त अगरि को बि माण्हू पाण तरक़ी करे थो या ॿियनि खे तरक़ी करण में मदद थो करे त उहो असल में राष्ट्र निर्माण में मदद थो करे हिते इहा ॻाल्हि बि ध्यानु ॾियण वारी आहे त जॾहिं असां राष्ट्र निर्माण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त हुन जी शुरूआति प्रारंभिक इकाई यानी व्यक्तिगत निर्माण सां थींदी आहे सभिनी खां पहिरियों असांखे व्यक्तिगत निर्माण करणो खपे व्यक्तिगत निर्माण जी सफलता समाज निर्माण में सहयोगी थींदी ऐं पोइ समाज निर्माण सां राष्ट्र निर्माण जी राह निकरंदी व्यक्तिगत निर्माण में इहो आवश्यक आहे त असां पंहिंजी क़ाबिलियत जो क्षमता जो भरपूर इस्तेमालु कयूं हिकु माण्हूअ जे रूप में समाज असांजे लाइ जिन दायित्वनि जो निर्धारण कयो आहे उन्हनि जो पालन कयूं ऐं पंहिंजो श्रेष्ठ परिणाम समाज खे राष्ट्र खे ॾियूं असांजो ॾिनल इहो श्रेष्ठ परिणाम राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया जो अंग ठहंदो आधार ठहंदो पंहिंजे व्यक्तिगत दायित्वनि खे स्मरण कंदे हुए असांखे इहो बि ध्यानु रखणो पवंदो कि असां हमेशा सकारात्मक भाव रखंदे हुए कार्य कयूं नकारात्मकता खे पंहिंजे पासे न अचणु ॾियूं हिन सां हिकु तरफ़ पंहिंजो कमु आसान थींदो त ॿी तरफ़ असां त्वरित गतीअ सां पंहिंजे लक्ष्य जी तरफ़ अग्रसर थींदासीं कुल मिलाए करे सार इहो आहे कि असांजे कयल व्यक्तिगत दायित्वनि जो सफल निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण जे दायित्व जो हिसो आहे ऐं असां सभी मिली करे हिन महायज्ञ में पंहिंजी आहुति ॾेई सघूं था
1: साथियो तव्हां ॿुधी रहिया हुआ चित्रेश रीजवानी खे अचो ॿुधूं था इहो मिठड़ो गीत

0: साथियों भगवंती नामाणी जी आवाज में यो मिठड़ो गीत बुद्धव जरूर ताके वणो होंदो साथियों अज आहे 5 जुलाई अज आहे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिहाड़ो हिन डी के असा कम ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जे विच हिकु बैलेंस ठाहिण जे लाइ सभिनि खे यादि ॾियण जी कोशिश में मल्हाईंदा आहियूं वाकई में साथियों घणनि ई भेरो असांजी ज़िंदगी में कमु वधीक हुअण करे नंढा नंढा पल असां एंजॉय ई कोन करे पाईंदा आहियूं हाणे त सभई ॾाढा बिज़ी थी विया आहिनि छो न थोरो टाइम पंहिंजे परिवार माउ पीउ ज़ाल घोट ऐं नंढे नंढे ॿारनि खे ॾियूं पोइ ॾिसो त छा ज़िंदगी जो हर हिकु पल सुहानो थो थी वञे अचो साथियों ॿुधूं था अमी ऐं मम्मी फिल्म जो इहो सुहिणो गीत
1: ए, हल ना।

0: ना बाजार
1: साथियों तमाम बुधिद रहया हुआ चेतन ए भगवंती नावाणी जी आवाज में यो मिठड़ो गीत हनई गीत सा गडो गड वीना के इजाजत दींदा वरी गर्जना सी इंदर सिंधी प्रोग्राम में तेसी ताई नमस्कार

0: करना बाजार
1: साथियों तमाम बुद्धि रहा हुआ चेतन ए भगवंती नावाणी जी आवाज में यो मिठड़ो गीत हने गीत सा गडो गड वीना के इजाजत दीना वरी करजना सी इंदर सिंधी प्रोग्राम में तेसी ताई नमस्कार

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आम।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं।

वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। कार अन्य चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें।

यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। दिन के 12:40 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए आशा भोंसले की आवाज़ में घुंघरू फिल्म का गीत। गीत को लिखा प्रभा ठाकुर ने है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में प्रेम पुजारी फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल नीरज ने लिखे थे, संगीत SD बर्मन का था। लीजिए अब सुनिए रूप कुमार राठौड़ और लता मंगेशकर की आवाज़ में वीर जारा फिल्म का गीत।

0: वीर ज़ारा फिल्म में लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। आप हमें FM चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 1 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लिवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की 3री वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत

0: की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटपूतली बहरोड के दौरे पर हैं। श्री यादव जिले की मुंडावर पंचायत समिति सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जाट बहरोड गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उनका रक्तदान शिविर के साथ ही जैतपुर में श्री श्याम मंदिर में नवनिर्मित श्याम कुंड उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग की टीम ने नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की बारिश का दौर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में सुबह तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। जैसलमेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले कल सीकर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में मानसून गतिविधियां जारी रहने और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत। प्रस्तुत करता है डॉक्टर स्वर्ण रेखा और माधवी व्यास।

0: दोपहर की इस सुनहरी बेला में हर उस बहन, हर उस परिवार और हर उस मुस्कुराते चेहरे को हम बार बार देखना चाहते हैं। अब आप भी सोच रही होंगी कैसे।
1: देखो, सोचने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम मन की आंखों से बहुत से चेहरों का नूर पढ़ लेते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है दोपहर का, जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है अपनी सभी बहनों को, और इंतज़ार इसलिए ही तो करते हैं कि काश के कोई हमें आ जाए और प्यार से बैठ कर हमसे दो बातें करे।
0: तो इसीलिए आज आपके रेडियो सखी माधवी व्यास
1: और डॉक्टर स्वरण रेखा,
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
1: बहुत प्यार से आपका हमारे कार्यक्रम में आमंत्रण है। जी हाँ, ये आमंत्रण क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर चर्चाएं, गीत संगीत, और माधवी कहते हैं ना कि आंखों की बातें, क्योंकि मन की बातें तो हम पढ़ लेते हैं, आंखों की जबां जहां पर हमारे दिल की सारी बातों को लेकर आ जाती हैं, तो कुछ बातें और भी खास हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। तो सखियों, किसी भी खूबसूरत शुरुआत में अगर संगीत का साथ मिल जाए तो दिल भी मुस्कुरा उठता है ना। तो आइए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे मधुर गीत के

0: साथ जो आपके मन को भी सुकून दे। तो सुनिए प्यारा, प्यार से, अपनायत से और मधुर एहसासों के साथ खूबसूरत सा गीत,
1: क्योंकि ये आपको आपसे जोड़ता है। स्टे कनेक्टेड।

0: हाँ सही कहा है ना माधवी, कि जब हम साथ में चलते हैं तो गीत संगीत के साथ साथ जीवन के भी बहुत से रंग बिखर जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो कहते हैं जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस घर में खुशियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढने चली आती हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें बस इतना याद रखना है कि

0: जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया है उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना।
1: बिल्कुल, उन्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जैसे बहनों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हमारी चर्चा बेहद खास है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का सिर्फ सम्मान नहीं होता, उनका अपनापन होता है जो हमें जीना सिखाता है। लेकिन लौट कर आएंगे माधवी, हम बहनों से लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद में पुनः लौट कर आइएगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: तो बहनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस अंतराल के बाद में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपनेपन की, ये कार्यक्रम अपना है, हम अपनेपन की बातें करते हैं, तो भाई इसी के साथ अपनेपन की बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हम बातें क्या करते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, तो हम बात अपना जो विषय है ये भी है बुजुर्गों का सम्मान। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला था कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में
1: बुजुर्गों का सम्मान जरूरी होता है,
0: बहुत जरूरी होता है। हमारे बुजुर्ग सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी परंपराओं के सच्चे रखवाले भी होते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: उनके जीवन का लंबा अनुभव हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कई बार उनकी एक छोटी सी सलाह हमें बहुत बड़ी परेशानियों से भी गलत फैसला लेने से रोक देती है।
1: बिल्कुल सही। सम्मान ना सिर्फ बड़ों का होता है, वो उनको एक अवसर भी देता है जहाँ पर हम उनसे सुनते हैं, उनकी बातों के बारे में चर्चा करते हैं, और हम उनकी छोटी छोटी सलाह पर भी अपने पारिवारिक मामलों में जो जहाँ पे तनाव महसूस कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें एक सही सलाह मिल जाती है। और साथ ही माधवी सबसे बड़ी चीज़ आती है, धैर्य और प्यार। जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें धैर्य और प्यार से कोई चीज़ समझाते हैं तो शायद वो बातें हमारे दिल के और करीब हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना, सुन दिए, कभी कभी जो बड़ी उम्र के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना और असमय गुस्सा आ जाना, मतलब हम उस वक्त धैर्य नहीं रख पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहने
1: बिल्कुल,
0: का मतलब ये है, अगर हम उस वक्त धैर्य रख लें और धैर्य रखकर, क्योंकि हमारी जो एज होती है वो बीच वाली है ना, हम छोटों में आते हैं
1: ना
0: हम बड़ों में आते हैं, तो वो टाइम होता है जब बड़े हमें कुछ बोलते हैं तो हमें वो चिड़चिड़ापन आता है। बस उस वक्त हमें बताना होता है कि वो बड़ों का जो संस्कार है वो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करता है।
1: बिल्कुल सही। क्योंकि जब बड़े हमें वहाँ पे संभाल लेते हैं ना माधवी, तो ऐसा लगता है कि बुजुर्ग हमारे परिवार की वो जड़ें हैं जो हमें सम्मान तो दिलवाना चाहती हैं हमारे अपनों के साथ में। बुजुर्गों का सम्मान एकमात्र सिर्फ उनका नहीं होता, पूरे परिवार का सम्मान होता है।
0: वो कहते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं कि जो सम्मान सिर्फ बड़ों के अवसर पर नहीं लिए जाते हैं कि आज दिवाली है तो उनके पाँव छू लिए, आज होली है, उनका सम्मान, उनका ध्यान से

0: बात सुनना, उनके हर फैसले पर हामी भर देना, ये उनका सम्मान ही है।
1: बिल्कुल सही। और जब हम ये सम्मान देते हैं तो ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। और चर्चाएं आगे और भी हैं। हमारी बहन है, क्योंकि अभी किचन में काम कर रही है, दोपहर का समय है और आज संडे भी है, तो तुम्हें पता है कि संडे भी वर्किंग डे ही
0: डे ही होता है औरतों के
1: होता
0: लिए स्पेशल।
1: है। तो कभी कुछ उनको खाने को देना है, कभी कुछ उनको पीने को देना है, कभी कुछ और चीज़ है। लेकिन उससे पहले अगर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखनी हो हमें, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, तो क्यों ना आज अपनी बहनों को एक वार्ता सुनवाई जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो आज की जो हमारी वार्ता है बहनों, उसका विषय है महिला स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आयुर्वेद के संदर्भ में, और वार्ताकार है डॉक्टर प्रीति गुप्ता।
2: हमारा शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त होगा तो मन भी शांतिपूर्ण रहता है, तो चेहरे का निखार देखते ही बनता है। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। आज की कॉरपोरेट संस्कृति एवं लाइफस्टाइल में ज़्यादातर महिलाएं हर समय अपने व्यवसाय व ऑफिस में ही निकाल देती हैं, और कामकाजी महिलाएं तो एक जगह बैठकर ही कार्य करती हैं, समय पर खाते पीते व सोते नहीं, जिसका सीधा असर उनके हेल्थ पर पड़ता है और फिर उनकी त्वचा व बालों पर। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है या शरीर के किन बीमारी का सीधा असर त्वचा व बालों पर पड़ता है। इनमें से है खून की कमी, विटामिन्स की कमी जैसे कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन की कमी, लिवर की बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस, मेलिग्नेंसी, अग्निमांद्य, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, अत्यधिक रक्तस्राव, PID, PCOD, रक्त व श्वेत प्रदर जैसी कुछ बीमारियां हैं। स्वास्थ्य के अलावा प्रकृति व प्रदूषण भी जिम्मेदार है, जो कि स्वास्थ्य व सुंदरता पर सीधा असर डालता है। सखियों, सुंदरता तभी होगी जब आप स्वस्थ होंगी। हमारा चेहरा पेट का आईना है। अगर आप सुंदर दिखना चाहती हैं तो स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। वैसे तो महिलाओं में ऐसे बहुत सी समस्याएं होती हैं जो कि सामान्य होती हैं और कुछ गंभीर भी, लेकिन समस्याएं यदि स्वास्थ्य से संबंधित हैं तो देर ना करते हुए लेडी डॉक्टर व नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और उचित निदान पाएं। अक्सर महिलाएं गर्भावस्था की समस्याएं, इरेगुलर पीरियड्स, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट की गांठ व अन्य समस्याएं आदि से ग्रस्त देखी जा सकती हैं। आज हम आपसे महिलाओं से जुड़ी कुछ समस्याएं या आम बीमारियों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि अपने स्वास्थ्य की अहमियत को समझते हुए उनके उपचार कराते रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इस सिंड्रोम का संबंध स्त्री में बनने वाले इस्ट्रोजन हार्मोन में बदलाव से है। इसकी वजह से ओवरीज में परिपक्व अंडे फूट नहीं पाते, बल्कि ओवरी में ही सिस्ट बना लेते हैं। इससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी, अनियमित माहवारी, चेहरे पर बाल निकलना, गंजापन, मुहासे निकलना, मोटापा आदि ये लक्षण उम्र के किसी भी पड़ाव में, यहाँ तक कि मीनोपॉज से पहले भी नज़र आ सकते हैं। अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो आगे चलकर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, यहाँ तक कि थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इनका डायग्नोसिस हम सोनोग्राफी और हार्मोनल टेस्ट से कर सकते हैं। बात करते हैं इनके उपचार की। इसका उपचार आमतौर पर मौखिक दवाइयों से शुरू होता है। साथ ही आयुर्वेद में और भी चिकित्सा पद्धति है जिन्हें रोगावस्था देखकर तय किया जाता है। महिलाओं को अपनी डाइट पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। कुछ योग आसन हैं जैसे प्राणायाम, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार से भी इस बीमारी में लाभ मिलता है। हमारे आरोग्य धाम में PCOS के उपचार में पंचकर्म का शुद्धिकरण ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें उत्तरवस्ति, विरेचन, वमन आदि के द्वारा विकृत पित्त व कफ को निकाला जाता है, जिससे शरीर के वजन को कम करना, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालना, इंसुलिन प्रतिरोध कम करना और सामान्य हार्मोन्स को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही खाने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिनका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बात करते हैं PID की, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यह महिलाओं में प्रजनन अंगों के संक्रमण है। PID एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो योनि और गर्भाशय को दूषित होने से मिलता है। क्लमाइडिया ट्राइकोमेटिस और गोनोरिया जैसी बीमारियों का संक्रमण ज़्यादातर PID के 75 से 90% मामले मौजूद होते हैं। इसके संक्रमण में गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब्स को नुकसान पहुँचता है। पेल्विस में सूजन और दर्द के साथ ही

लचपन का खतरा भी होता है। इसकी जांच सोनोग्राफी के द्वारा की जाती है। इसके लक्षण ऊपरी व निचले पेट क्षेत्र में दर्द व सूजन, मतली, उल्टी, बुखार, कपकपी, दुर्गंध युक्त असामान्य योनिस्राव, दुर्गंध युक्त मूत्र त्याग, अनियमित व अत्यधिक और दुर्गंध युक्त मासिक स्राव है। अब बात करते हैं श्वेत प्रदर लिक्यूरिया की। लिक्यूरिया यानी सफ़ेद पानी आना, जिसे आयुर्वेद में श्वेत प्रदर कहा गया है। इस रोग में गर्भाशय में श्लेष्मिक कला में सूजन होने के कारण योनि से सफ़ेद, पीला या रक्त मिश्रित स्राव निरंतर बहता रहता है। यह ज़्यादातर उन स्त्रियों में अधिक होता है जिनके मासिक धर्म अनियमित होते हैं। घरेलू उपचार में इसको हम ठीक किया जा सकता है काफ़ी हद तक। आंवला का नियमित सेवन करें, केले को लंबाई में काट लेवें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के उसको रख दें कुछ देर के लिए, फिर छिलका हटाकर खा लीजिए। इससे श्वेत प्रदर में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिला है। मेथी के लड्डू भी लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार अगर हम योनि को नीम, मुलेठी या त्रिफला के क्वाथ से धोएं तो श्वेत प्रदर के इन्फेक्शन से काफ़ी निजात मिल जाती है। अब बात करते हैं अनियमित माहवारी की। सामान्यतः महिलाओं में पीरियड्स की अवधि 25 से 35 दिनों की होती है सामान्य, और इसे सामान्य माना जाता है। महिलाओं में 25 दिन से कम या 35 दिन से ज़्यादा अंतराल में माहवारी आती है तो उसे अनियमित माहवारी कहा जाता है। 10 से 16 वर्ष की आयु में शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष के बाद मीनोपॉज में माहवारी बंद हो जाती है। यह सामान्य है। यदि इससे पहले या बाद में माहवारी आती है या तकलीफ देती है तो अनियमित माहवारी कहलाती है। यहाँ 2 से 3 बार से अधिक इस चक्र में अनियमितता दिखे तो अनदेखा ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। इसे ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के द्वारा इसकी जांच की जाती है। उपचार में तिल और शतावरी, ग्वारपाठा जैसी कुछ दवाइयाँ हैं जिनको लेने से अनियमित माहवारी में लाभ देखा गया है। चौलाई की जड़ 5 ग्राम सुबह शाम खाली पेट माहवारी आने से 7 दिन पहले लें और माहवारी शुरू होने के बाद इसे बंद कर दें। इसको अगर 2-3 महीना लेते हैं तो माहवारी नियमित हो जाती है। इसी प्रकार रेवन चीनी है 3 ग्राम, अगर पीरियड्स आने के 7 दिन पहले से लेकर माहवारी आने पर बंद कर दिया जाए तो इससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आपको माहवारी में रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो विदारी कर्ण का चूर्ण बहुत लाभकारी रहता है। 1 चम्मच विदारी कर्ण का चूर्ण 1 चम्मच मिश्री के साथ मिलाकर सुबह शाम रोज लें। इससे मासिक धर्म में अत्यधिक खून आना बंद होता है और माहवारी नियमित होती है। बहनों, शहर में रहने का मतलब है बढ़ते हुए पर्यावरण के बीच रहना और इसी बीच रहकर सेहतमंद त्वचा के लिए ब्यूटी के नियम तय करना। लेकिन सखियों, रूखी और बेजान त्वचा बालों के लिए हमेशा मौसम या प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है। इसके सही तरीके से देखभाल जो खूबसूरती के साथ साथ आपको दिखाएगी आपको यंग और सपल स्किन, लेकिन हरदम जवां और खूबसूरत नज़र आने के लिए ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाने, महंगे स्पा और फेशियल लेने से बेहतर है घर पर ही नेचुरल चीज़ों से त्वचा, बाल व बालों का ट्रीटमेंट करना। आप भारत की प्राचीनतम संस्कृति आयुर्वेद को भी अपना सकती हैं। आपकी रसोई में बहुत सी जड़ी बूटी रहती हैं जिन्हें आप होममेड मास्क, उबटन, फेस पैक आसानी से तैयार कर सकती हैं, जो हर तरीके से फायदेमंद है व इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर त्वचा व बालों का ख्याल और उचित ढंग से रखरखाव ना किया जाए तो उसका प्रदूषण व दुष्प्रभाव पड़ते देर नहीं लगती। बाल 2 मुँह है और असमय सफ़ेद होने लगते हैं, साथ ही झड़ने भी लगते हैं। प्रकृति, पर्यावरण के साथ ही सूर्य की किरणों में संपर्क ज़्यादा समय रहें तो शरीर में स्थित लचीलापन की धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाता है। त्वचा सिकुड़ने लगती है तथा उस पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं, क्योंकि प्रदूषण पैदा करने वाले कण त्वचा पर चिपके रह जाते हैं और रोम छिद्रों को बंद कर त्वचा पर मुहासे और ब्लैक हेड्स पैदा कर देते हैं। इसके लिए जहाँ तक हो सके हर्बल तरीके से एवं साथ ही हर्बल सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नियमित शरीर की सफाई व स्नान करें। नहाते समय झावे व स्क्रब को हल्के हाथों से इस्तेमाल करें। अच्छे से स्नान करें और स्नान से आधा घंटा पहले किसी अच्छे तेल से मालिश करें, फिर आधा घंटे के बाद प्रसन्न मुद्रा में नहावें। झरने या शॉवर के नीचे नहाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। रात्रि में सोते समय त्वचा पर जमी मिट्टी, सौंदर्य प्रसाधन के अंश व त्वचा के मृत कण व जमी हुई तैलीय परत को ठीक से साफ कर देना चाहिए। सोने से पहले पैरों को हल्के कुनकुने पानी में 15 मिनट डुबोकर रखें। इसमें चुटकी भर नमक

0: देने से पूरे शरीर को आराम मिलेगा। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया, वहीं सौंदर्य के लिए भी होममेड व नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया। आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम विद्या है। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री आपकी रसोई में आसानी से पाई जा सकती है। आप जैसे कि हेयर मास्क के लिए बेसन, कड़ी पत्ते, दही से आप अच्छा सा एक हेयर मास्क बना सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठकर आयुर्वेद की मदद से कैसे खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं। पपीता और मुल्तानी मिट्टी। इसमें कच्चा पपीता ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि उपलब्ध ना हो तो पके हुआ पपीते को भी ले सकते हैं। इसको चेहरे पर लेप करें। प्रदूषण की वजह से त्वचा पर नुकसान को आप पपीते और मुल्तानी मिट्टी से दूर कर सकते हैं। पपीता जहाँ टैनिंग को दूर करता है, वहीं मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर मौजूद धूल और गंदगी को साफ करती है, साथ ही पिंपल्स को भी दूर करती है। इस पैक में आप पपीते को मैश करें, उसमें शहद, नींबू का रस, चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूखने पर इसे धो दें। इसी प्रकार आप हफ्ते में 2 बार उपटन लगा सकती हैं पूरे शरीर पर। उपटन में हल्दी, बेसन, चंदन पाउडर, गुलाब जल, दूध, बादाम व केसर से मिलाकर आप उपटन करें और उसको मलते हुए उसकी परत को हटा दें। इससे डेड स्किन भी निकलेगी और त्वचा पर चमक आएगी और मॉइस्चर मिलेगा स्किन को। इसी प्रकार मूंग की दाल जहाँ खाने में फायदेमंद होती है, उसी प्रकार इसका फेस पैक भी उतना ही लाभकारी है। दाल को पीस कर आप पाउडर बना लें। इसमें चंदन व संतरे का पाउडर, नींबू का रस, गुलाब जल, कड़ी पत्ता और अगर कड़ी पत्ता ना मिले तो हरा धनिया भी मिलाकर इसका पैक बनाएं और इसको चेहरे पर लेप करें। यदि त्वचा को मॉइस्चर देना है तो दाल को रात भर भिगो दें। सुबह इसको पीस कर शहद मिलाकर इसको चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे को, स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर मिलता है। पिंपल्स के लिए आप नीम की पत्ती, नींबू का रस और चंदन पाउडर मिलाकर लगा सकती हैं। तो बहनों, इस प्रकार आप अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य का ध्यान रख सकती हैं आयुर्वेद के जरिए।
1: जी हाँ बहनों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था महिला स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आयुर्वेद के संदर्भ में, और वार्ताकार थी डॉक्टर प्रीति गुप्ता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं माधवी इसमें जो इन्होंने, प्रीति जी ने बताई, जिसमें सौंदर्य से संबंधित था, हमारे रूप निखार से था, पीसीओडी पीसीओएस के बारे में बात की इन्होंने, और कहते हैं ना जीवन के हर उस आयाम को छू लिया जो एक महिला के सौंदर्य से स्वास्थ्य से जुड़ी होती है।
2: बिल्कुल।
1: और एक और चीज़ क्या जुड़ी होती है स्वास्थ्य से?
2: स्वास्थ्य से जुड़ी होती है हमारा संगीत। तो सखियों को अब ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं उन्हें ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: सखियों, उम्मीद है ये गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। सखियों, कहते हैं प्रकृति हर बीमारी का इलाज अपने आंचल में छुपा कर रखती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही अनमोल खजाने की सखियों, जिन्हें हम औषधि पौधे कहते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और ये औषधीय पौधे चाहे कहीं से भी मिले, हमारी प्रकृति की देन तो है ही, हमारी रसोई की भी तो देन है, क्योंकि ये पौधे हमारी रसोई के अंदर से हमें सुगंध, मिठास, खुशबू और जिसको कहते हैं स्वास्थ्य, तीनों लेकर आते हैं। और साथ ही आज की जितनी भी आधुनिक दवाएं बन रही है माधव, इन सब में इन औषधीय पौधों का बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी चीज, मैं तुलसी।
0: हाँ बिल्कुल, हमारे आंगन में लगी जो तुलसी होती है, बीच में वो गिलोई भी बोलते हैं जिसे, अश्वगंधा है, ये सिर्फ पौधे नहीं होते हैं बल्कि हमारे सेहत के रक्षक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: सर्दियों में आयुर्वेदिक में इन, मतलब सदियों से बताते आ रहे हैं कि आयुर्वेदिक यही बता रहा है कि इनका उपचार हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। क्यों दीदी,
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और इन्हें अपनाना भी चाहिए।
1: और देखो, जैसे तुमने तुलसी की बात कही, तो तुलसी को हमने जड़ी बूटियों की रानी कहा है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे त्वचा के लिए भी अच्छे हैं, हमारे शरीर के सभी अंगों को पूर्ण रूप से निरोगी रखने में मदद करते हैं। साथ ही इसका लाभ है कि यह श्वसन तंत्र को मजबूत करती है, सर्दी खांसी में राहत देती है और मानसिक तनाव को कम करती है। ऐसे ही गिलोय है, जिसे आयुर्वेद में
0: बिल्कुल अमृत कहा गया है, क्योंकि गिलोय से जो हमें छोटे मोटे साधारण जो बुखार आते हैं, शरीर में थकान होती है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

0: हमारे शरीर का है कि नहीं, और
1: बिल्कुल
0: वो बहुत
1: सही।
0: तेजी से बढ़ाता है और यहाँ तक कि जो हमारा रक्त है उसको भी साफ करता है। और वायरल बुखार में ये एक हमारे लिए एक रामबाण का इलाज करती है, कहते हैं ना कि ये हमारे लिए भगवान ही बनकर आ गया है,
1: तभी तो इसे अमृता कहा गया है।
0: हाँ, इसे इसीलिए अमृता कहा गया। और अश्वगंधा जो है शरीर में जो हमारे फुर्ती है स्फूर्ति है उसको बढ़ाने का काम करती है कि नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो बहनों, तीनों छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन तीनों बहुत बड़ी और अमृतमयी। ऐसे ही जैसे इस माधवी ने फटाफट से क्विक रिकैप के साथ आपको ये तीनों चीजें बता दी, लेकिन ये चीजें इसलिए बताएं क्योंकि माधवी खुद तुलसी को अपने घर में सेवन में लेती है और कई चीजों में इसने भी, जैसे हमारी आज स्टूडियो से पीछे चर्चा हो रही थी तो इसने बताया था कि कई जगह पर जहाँ एलर्जी हुई है इसे, उसमें एलर्जी में भी इसने मदद करी है।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही जहाँ इसका सेवन अगर हम विभिन्न आयामों में करते हैं, आप चूर्ण बना के ले सकते हैं, जूस के रूप में ले सकते हैं या काढ़े के रूप में ले सकते हैं, क्यों माधवी?
0: हाँ, तो मुझे तो अक्सर कमजोरी भी आती है ना दी, तो मैं अश्वगंधा का सेवन अपने ग्रीन टी के साथ कर ही लेती हूँ।
1: बहुत बढ़िया। देखो

0: कि कई जगह पे जहां एलर्जी हुई है इसे, उसमें एलर्जी में भी इसने मदद करी है.
1: बिल्कुल.
0: और साथ ही जहां इसका सेवन अगर हम विभिन्न आयामों में करते हैं, आप चूर्ण बना के ले सकते हैं, जूस के रूप में ले सकते हैं या काढ़े के रूप में ले सकते हैं. क्यों माधवी?
1: हाँ, तो मुझे तो अक्सर कमजोरी भी आती है ना दी, तो मैं अश्वगंधा का सेवन अपने ग्रीन टी के साथ कर ही लेती हूँ.
0: बहुत बढ़िया. देखो बहनों, दो चीजें आज हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा रही है. पहली चीज कि अमृतमयी जो औषधीय पौधे हैं वो, जिसमें माधवी ने भी अपनी एक बात को रखा है कि वो खुद स्वयं इस चीज का खुद से इस्तेमाल कर रही है. और साथ ही एक चीज और कि हमारे यहाँ पे गीत संगीत आपका साथ हमेशा लेकर चलते हैं, कभी हम वो साथ छोड़ते नहीं. तो माधवी, क्यों बहनों को एक और गीत संगीत की दुनिया में लेकर चला जाए?
1: बिल्कुल, सखियां इंतजार कर रही हैं उस संगीत का, तो चलो सखियों के साथ हम भी गुनगुना लेते हैं.
0: हाँ, क्योंकि आपके प्यार में हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, जैसे मैं माधवी के प्यार में अभी बहुत कुछ सोच रही हूँ, वैसे ही बहने आप हमारे प्यार में क्या सोच रही है, शायद कुछ ऐसा ही.

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: चलो सखियों, एक छोटे से अंतराल के बाद में फिर से लौट आए हैं, अपने कार्यक्रम को फ्लो में लेते हैं। सखियों, रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते हैं, है ना?
6: बिल्कुल।
5: लेकिन जब बात सम्मान और अधिकार की हो तो जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।
6: बिल्कुल जरूरी है माधवी, क्योंकि जब भारतीय कानून के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिया गया है, तो ऐसे ही बहुओं को भी पति की पुश्तैनी संपत्ति पर सीधा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन उनको सीधा हक ना देते हुए शेयरिंग, जिसको हक कहते हैं, या अधिकार ऐसा कि जहाँ पे संपूर्णता के साथ साथ उनको मिलना या पति के जरिए मिलने का लाभ जो बहू को मिलता है, उस अधिकार की बात हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सास ससुर के साथ में रहते हैं वे, अगर किसी को मैट्रिमोनियल होम के तहत कोई अधिकार दिया जाता है, तो वहाँ पे वो सेल्फ एक्वायर्ड यानी खुद से कमाया हुआ पैसा वो अपने अधिकार में ले सकती है। अब बातें बेटी से संबंधित थी, क्योंकि पैतृक संबंधी बेटियों के लिए क्यों जरूरी है, क्या अधिकार जरूरी है, ये उनके जन्म से जुड़ जाता है, क्योंकि उनका हक है हिंदू अधिकार अधिनियम के तहत, जिसमें बेटी की स्थिति पैतृक संपत्ति में बिल्कुल बेटे जैसी है। दूसरा, विवाह का प्रभाव भी पड़ता है। अगर शादीशुदा या अविवाहित होने पर बेटी अधिकारों पर प्रभाव लेती है, तो वहाँ पर शादीशुदा को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता, लेकिन अविवाहित बेटी को अधिकारों में कुछ छूट दी गई है। साथ ही पिता की मृत्यु के बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसके तहत अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता है या बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है, बशर्ते कि उस समय तक यानी 2004 का जो अमेंडमेंट आया था तब तक कोई वैध बंटवारा ना हुआ हो। ये जानकारी इसलिए बहनों के लिए जरूरी है माधवी, कि कम से कम उन्हें ये पता चले कि पैतृक संपत्ति में बेटियों और बहुओं का क्या अधिकार है।
5: बिल्कुल।
6: और क्यों जरूरी हो जाता है।
5: तो भाई, इतनी सुंदर जानकारी के बाद में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हक की राह पर जो कदम बढ़ाता है वही आत्मविश्वास की मंजिल तक पहुंच जाता है।
6: बिल्कुल सही।
5: जागरूकता ही वही रोशनी है जो हर अंधेरे को मिलाता है, है ना? तो और अब इन्हीं प्रेरणादायक विचारों या फिर यूं कहें कि जानकारी के बाद में फिर एक मधुर गीत याद आने लग गया है। तो चलो गीत संगीत की दुनिया में।
6: हमारे गीत संगीत में एक चीज और भी है कि जब हमारा किसी से राबता होता है या किसी से मिलने का कोई ख्याल होता है, तो हम कहीं ना कहीं उससे

0: जुड़ ही जाते हैं। और ये जुड़ाव क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर हम सारी चीज़ों में खुद को इतना पेशोपेश में रखती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, और जब खून की कमी होती है ना माधवी, तो उससे अनीमिया हो जाता है। रक्त की कमी का जो मुख्य कारण होता है आयरन की कमी और मासिक धर्म में होने वाला रक्तस्राव, और कई बार गर्भावस्था की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसके कारण। लेकिन ये चर्चा इसलिए कह दी मैंने बीच में कि जब महिलाओं को हम म्यूजिक से एक थेरेपी देकर उनको रिलैक्स करते हैं तो शायद वो अपनी इन चीज़ों को एक दरकिनार कर देती हैं या सेकेंडरी फेज पे रख देती हैं। तो हमारा राबता हमारी सेहत से भी है, और माधवी किससे है?
1: गीत संगीत की दुनिया से। तो ले चलते हैं उनको फिर से एक बार

0: ना बहनों, जीवन का लक्ष्य एक ही है कि जब हमें खून की कमी हो तो हमें माधवी खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पोषक तत्वों का, विटामिन्स का, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें फॉलिक एसिड और साथ में विटामिन B12 की बहुत अधिकता रहनी चाहिए।
1: और हमेशा खून की कमी के अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो लक्षण अब आप कैसे नोट करोगे कि लक्षण कैसे दिखाई दे? अधिक थकान हो या कमजोरी महसूस होने लगे, त्वचा या नाखून या फिर आंखों के नीचे पीलापन दिखाई दे, थोड़ा सा चलने में सांस फूलने लगे या दिल तेज धड़कने लग जाए या फिर सर दर्द हो, ऐसे कुछ आपको दिक्कत आने लगे तो आप समझ जाइए कि शायद आपको खून की कमी है।
0: बिल्कुल सही। और खून की कमी को अब हम और दूर कर देते हैं, वो ऐसे कि आयरन युक्त भोजन लीजिएगा, विटामिन सी का सेवन कीजिएगा जो अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जैसे नींबू, संतरा और आंवला, और सबसे बड़ी चीज हमारा म्यूजिक।
1: म्यूजिक

0: तो सखियों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की हमारी ये मुलाकात आपके दिन में मुस्कान और रंग और अच्छे से सौगात लेकर छोड़ रही होंगी।
1: बिल्कुल सही, इसलिए छोड़ रही होंगी क्योंकि हमारे ब्यूटी टिप्स में एक जाते जाते की चीज़ है कि चुकंदर से ब्यूटी टिप्स का एक गुलाबी गाल करने का तरीका। जी हाँ, चुकंदर के रस में थोड़ा सा एलोवेरा जल मिलाएं और साथ में नारियल का तेल गालों पर लगाएं ब्लश की तरह, तो देखिएगा एक नेचुरल ग्लो पिंक करेगा। और साथ ही अगर हमें नॉर्मल फूड कलर्स के रूप में इसको खाने में इस्तेमाल करना है तो आप सलाद और जूस में चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हेल्दी नाश्ता भी बनाता है और साथ ही नाश्ता इसलिए क्योंकि जाने का समय हो रहा है। दोपहर का टाइम है, तो ये हमारी ब्यूटी की छोटी छोटी चीजें साथ में हमारे जुड़ जाती हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा बिजली पानी और

0: ये बचत करना बहुत ज़रूरी है। मौसम परिवर्तन है, हीट वेव्स दोबारा आ रही हैं, तो इस हीट वेव्स में जो मौसम की बौछार के कारण गर्मी होती है उससे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही क्योंकि हमारा अपना कार्यक्रम अब समाप्ति के कगार पर है, तो दीजिए इजाज़त आपकी अपनी
1: माधवी व्यास
0: और डॉक्टर स्वरण रेखा को।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों

0: के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध 2 प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल

0: कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दिन दिन वो मारा ढाला पे है, जैसे पानी में घूरा है ढेला।
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड के

0: माहे, मराठवाड़ देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए क्रांति फिल्म का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का। गीत के बोल संतोष आनंद ने लिखे हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ में घरौंदा फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल गुलजार के थे, संगीत जयदेव का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में कामचोर फिल्म का गीत। गीत के बोल इंदिवर के हैं, संगीत राजेश रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत अपनापन फिल्म से है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, युगल स्वर है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के।

कालीचरण फिल्म में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोमीटर पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। FM चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। दूसरी सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे।

0: शब्द केवल हमारी आवाज़ नहीं होती, वे हमारे विचारों, संस्कारों और व्यक्तित्व का परिचय भी देते हैं। इसीलिए हर शब्द बोलने से पहले एक बार मन से पूछ लेना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त पूर्विका पारिक।
1: और मैं हूं आपका अपना दिले अजीज अक्षय।
0: अक्षय, एक बात मैं अक्सर सोचती हूँ,
1: क्या?
0: कि हमारे जीवन में सबसे अधिक उपयोग किस चीज का होता है?
1: अगर तुम मुझसे पूछती हो तो मैं कहूँगा कि हमारे शब्द। सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो एक रात हम न जाने कितने लोगों से बात करते हैं, कभी परिवार से, कभी मित्रों से, तो कभी कार्यस्थल पर हम जब दिन में जाते हैं वहाँ पर करते हैं। लेकिन शायद हम यह कम सोचते हैं कि हमारी कही एक छोटी भी बात सामने वाले को कितना प्रभावित कर सकती है, कितना दिल को छू सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा से हमें यही सिखाते आए हैं कि बोलने से पहले थोड़ा ठहर कर सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जो कहना चाहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होता है कि हम उसे किस तरह से कह रहे हैं।
1: बिल्कुल, कई हमारी बात होती है जो शायद हम एकदम सही कहते हैं, लेकिन यदि उसे हम कठोर शब्दों में कह दें तो सामने वाला उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वहीं यदि हम वो बात थोड़ी विनम्रता के साथ, थोड़े सम्मान के साथ हम कहें और अपने शब्दों को थोड़ा और बेहतर तरीके से रखें तो उसका प्रभाव बिल्कुल उस पर अलग तरीके से पड़ता है।
0: यही तो शब्दों की शक्ति होती है अक्षय, वे दिलों को जोड़ भी सकते हैं और अनजाने में दूरियाँ भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमारी वाणी में संयम और संवेदनशीलता होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है।
1: पूर्विका, मुझे इस बात से एक बात याद आ रही है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहते थे कि यदि कोई बात कहने से पहले यह सोच लिया जाए कि उससे किसका भला होगा या किसका नहीं होगा, तो शायद जीवन में कभी किसी को अनावश्यक दुख नहीं पहुंचाएंगे आप।
0: बहुत सुंदर बात कही तुमने। वास्तव में बोलने से पहले यदि हम तीन बातों पर विचार कर लें कि क्या ये बात सच है और क्या ये बोलनी हमारे लिए उतनी आवश्यक भी है और क्या हम इसे विनम्रता से कह सकते हैं, तो हमारी बातचीत स्वयं ही बेहतर हो जाएगी।
1: हाँ, और आज के समय में इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। पहले बातचीत आमने सामने होती थी, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। कुछ क्षणों में हज़ारों लोग तक हम पहुंच जाते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे लिखी गई कोई एक टिप्पणी या हमारी कोई सोच को साझा किया जाए तो कोई भी कई भ्रम पैदा हो सकते हैं, कई विवाद का कारण भी बन सकता है। तो एक शब्द को बोलने से पहले तोलना ज़रूरी हो जाता है।
0: सही कहा, इसीलिए केवल बोलते समय ही नहीं बल्कि हमें कुछ लिखते समय भी उतनी ही सावधानी रखनी भी चाहिए। किसी भी जानकारी को अगर हम साझा करते हैं तो हमें पहले उसकी सत्यता के बारे में जांच कर लेना चाहिए और भाषा का संयम भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है।
1: बहुत खूब। और एक अच्छी बातचीत की शुरुआत भी केवल अच्छा बोलने से नहीं होती, मेरा ये मानना है, बल्कि अच्छे से सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। यदि हम सामने वाले की बात को पूरी धैर्य के साथ सुने तो शायद आधी गलत फहमी वहीं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा क्या कहना है?
0: बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो तुम। कई बार जो है हम उत्तर देने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, हम सामने वाले की पूरी बात सुनते भी नहीं है, जबकि अच्छा संवाद वही है जिसमें हम दोनों पक्षों की बात अच्छे से सुने और एक दूसरे की बात को समझने के बाद ही हम हमारा जवाब दें।
1: और ये ऐसा अक्सर हम घर परिवार में देखते भी और ये बात लागू भी होती है। माता पिता के कुछ प्रोत्साहन भरे हमारे आत्मविश्वास पर बढ़ जाता है, उनकी जो बातें होती है, और बच्चों द्वारा जो सहानुभूति जो हमारी होती है, सम्मानपूर्वक जो हम उनकी बातें सुनते हैं, कहीं कही गई बातें परिवार में अपनापन बनाए रखने में मदद भी करती है।
0: हाँ, चाहे कार्यालय हो, विद्यालय हो या फिर समाज हो, हर जगह हमारी जो वाणी है वही हमारे व्यक्तित्व का परिचय भी देती है। मधुर भाषा, धैर्य और सम्मान के साथ की गई बातचीत से कठिन परिस्थितियाँ भी सरल हो सकती हैं।
1: और हम देखते भी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा विवाद बन जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमें शांत रहकर सोच समझकर अपनी बात रखे और कई बार वही विवाद वही समाप्त हो जाता है। इसलिए

0: संयमित वाणी केवल एक आदत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है, एक जीवन कौशल है।
1: हमारे संतों और महापुरुषों ने भी वाणी के महत्व पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने हमेशा प्रेम, करुणा और मधुर व्यवहार को जीवन का आधार माना है और यही कारण है कि आज भी उनके विचार हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
0: पूर्विका, मुझे तो लगता भी है कि बच्चों को तो बचपन से इस विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि वे सीख जाएँ कि किस प्रकार हमें मजाक करनी चाहिए और कैसे हम दूसरों का जो है कुछ कूट शब्द ना कहें, उनको गुस्से वाली बात ना बोले, तो वे आगे चलकर संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने में सक्षम रह पाएंगे।
1: अच्छी आदतें जो होती हैं वो हमेशा बचपन से ही विकसित होनी चाहिए, जैसा कि तुमने कहा। और यदि हम बच्चों को धन्यवाद कहना, क्षमा मांगना सिखाएं या जैसे प्लीज बोलना भी सिखाएं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो दूसरों को सम्मान करने के एक तरीके से काम आते हैं। तो और वही जो है वो हमें जीवन भर हर मूल्यों को अपने साथ लेकर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
0: इसके साथ साथ सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम बड़ों को भी समय समय पर स्वयं का मूल्यांकन भी करना चाहिए। यदि कभी हमारी किसी बात से किसी का मन दुख जाए तो बिना संकोच के अपनी गलती को स्वीकार कर ले और क्षमा मांग लेना एक अच्छी आदत है। कहते ना, क्षमा विरुष्य भूषणम।
1: सही कह रहे हो एकदम। क्षमा मांग लेने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है बल्कि उसका व्यक्तित्व और अधिक बढ़ जाता है। विनम्रता और मधुर वाणी ऐसे गुण हैं जिसकी सराहना हर जगह होती है।
0: श्रोताओं, जब भी कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो या पहले एक पल ठहरे आप और सोचें कि क्या ये शब्द सही है, यहाँ पर सही समय पर है, और शब्दों का चयन करेंगे तो सम्मान और सद्भावना भी बढ़ेगी, सकारात्मकता का संदेश भी आपके मुंह से निकलेगा। तो जो भी शब्द बोले आप सोचे समझे उसके बाद बोले,
1: क्योंकि हमारे शब्द ही वो होते हैं जो हमें केवल बातचीत का माध्यम नहीं होते हैं बल्कि वे हमारे संस्कारों का दर्पण भी होते हैं। यदि हमारी वाणी में मधुरता होगी तो हमारे रिश्तों में विश्वास होगा, हमारे परिवार में अपनापन होगा और समाज में सौहार्द का वातावरण बना रहेगा।
0: क्योंकि शब्दों में वो जादू है कि कोई भी कल्पना को वास्तविकता में ला सकता है। कैसे? जैसे इस गीत में लाया गया है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: तो गीत में तो आपने सुना शब्दों का जादू, अब जादू देखना है आपके दिमाग का भी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्विज टाइम में चलने की। तो क्विज टाइम में हम आपके लिए लाए हैं दो प्रश्न, और उसमें से जो आपके लिए पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मैं प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
1: और दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। मैं प्रश्न को फिर से दोहराती हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों प्रश्नों का जवाब पता होगा। तो चलिए हम बताएंगे इन प्रश्नों का जवाब आपको इस कार्यक्रम के अंत में। तब तक सुनते हैं आगे की बातें।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक, और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: पूर्विका, अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि देश का भविष्य उसके युवाओं के सपनों, संकल्पों और कर्मों पर निर्भर करता है, ऐसा हम अक्सर सुनने को मिलता है।
3: हाँ।
2: और भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है।
3: बिल्कुल, और जैसे कि हम जानते हैं अक्षय, कि जब हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि आज के जो हमारे युवा हैं वो ही आगे जाकर कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई शिक्षक या कोई डॉक्टर, तो कोई किसान या कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, या कोई प्रशासनिक अधिकारी ही बनेगा, या फिर जिम्मेदार नागरिक बनकर ही इस देश की प्रगति को नई दिशा देगा।
2: बात बहुत सही है, लेकिन विकास भारत का, विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है। इसका मतलब है ऐसा भारत जहां शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, सिर्फ शब्दों में नहीं वास्तविकता में, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, तकनीक का सदुपयोग हो और समाज को समान अवसर उपलब्ध हो, इन सभी क्षेत्रों में युवा अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
3: और आज का युवा पहले से अधिक जागरूक भी है, नई तकनीक को अपनाने में वो सबसे आगे है। दोस्तों, डिजिटल माध्यमों का यदि हम सही उपयोग करें तो ना केवल उसे आगे बढ़ा जा सकता है, बल्कि दूसरों को शिक्षा, जानकारी और नए अवसरों से जोड़ा भी जा सकता है।
2: बिल्कुल जोड़ा सकता है, और यही कारण है कि आज कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। तुम भी देख रही हो, यदि युवा अपने ज्ञान के साथ साथ कई विशेष कौशल भी रखता है और विकसित करे तो वो रोजगार प्राप्त कर सकता है, साथ ही स्वयं भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकता है। इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है और भी अधिक मजबूत हो सकती है।
3: दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की भी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है, और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना, जल संरक्षण पर ध्यान देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाना, ये ऐसे काम हैं जो गांवों के साथ साथ पूरे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
2: और ये परिणाम हमें स्पष्ट रूप से देखने को भी मिल रहे हैं कि आज कई युवा अपने गांव वापस लौटकर कृषि, डेयरी, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें यह संदेश मिलता है कि अवसर केवल बड़े शहरों से नहीं होता है, बल्कि हमारे गाँवों में भी मौजूद है, बस ज़रूरत है तो उन्हें पहचानने का और उन्हें स्वीकार करने का।
3: एकदम सही कह रहे हो अक्षय तुम, विकसित भारत के जो निर्माण है उसमें शिक्षा की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है। केवल डिग्री प्राप्त करना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन

0: मूल्यों का अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। एक शिक्षित युवा अपने साथ साथ समाज को भी सही दिशा दिखाने में बहुत मदद करता है।
1: पूर्विका, मुझे तो लगता है कि पर्यावरण संरक्षण भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर युवा बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यानी कि यदि प्रत्येक युवा हर वर्ष कुछ पौधे लगाए, सिर्फ कुछ पौधे, और जल संरक्षण का संदेश दे और प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करे और उसको करने का प्रयास पूर्णतया करे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
0: एकदम सही कह रहे हो तुम अक्षय, क्योंकि इसके साथ ही स्वच्छता भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम हमारे घर को, हमारे स्कूल को, हमारे ऑफिस को, या हाँ तक कि हमारे आसपास के वातावरण को भी अगर हम स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं तो इससे एक बहुत सफल हमें परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का कार्य नहीं है, हम सबका है, हम पूरी जनता का, हमारे नागरिकों का है। और जब हम नागरिक ही स्वयं आगे आते हैं तभी स्वच्छता एक जन आंदोलन बनती है।
1: बहुत खूब। और युवा का एक और महत्वपूर्ण भूमिका भी है, वो है कि सामाजिक सद्भावना भी वो बनाए रखे। आज विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं से हमारा भारत भरा है, और हमारे देश में आपसी सम्मान और भाईचारा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। युवा यदि सकारात्मक सोच अपनाए और समाज को एकता का संदेश दे तो देश जो है और अधिक मजबूत होगा, मजबूती की ओर एक तरफ और बढ़ेगा।
0: दोस्तों, आज सोशल मीडिया भी युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यदि इसका उपयोग सकारात्मक विचारों, सही जानकारी और प्रेरणादायक कार्यों के लिए किया जाए तो यह समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रभावी मीडियम के रूप में साबित हो सकता है।
1: लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक है कि युवा किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता को अवश्य रूप से जांचे। जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना भी विकसित भारत के लिए एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपके जो नोन है वो आपके द्वारा कही गई बात को महत्व देते हैं।
0: क्योंकि एक विकसित राष्ट्र केवल तकनीक या भवनों से नहीं बनता है दोस्तों, बल्कि वहाँ रहने वाले जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। यदि युवा ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सेवा की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो देश की प्रगति निश्चित ही है।
1: इतिहास भी हमें यह सिखाता है कि जब जब युवाओं ने देश हित में सर्वोपरि रखा है देश हित को, तब तब भारत नई नई ऊंचाइयों को छू पाया है। आज आवश्यकता है कि युवा अपने सपनों के साथ साथ राष्ट्र के सपनों को भी अपना सम्मान मानते हुए, अपना सपना मानते हुए उसे स्वीकार करे, उसके लिए प्रयत्न करे।
0: तो मेरे प्रिय युवा साथियों, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास नए विचार हैं और कुछ नया करने का साहस भी है। इन गुणों का उपयोग केवल अपनी सफलता के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी कीजिए। आपका हर सकारात्मक प्रयास विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा।
1: जैसे कि मैंने भी कहा था पहले भी कि युवा ने जब जब प्रयास किया है तब तब एक ऊंची उड़ान पकड़ी है। कहते हैं ना के शेरा उठ, वही अंदाज दिखा अपना, सारी दुनिया तैयार है तेरे उस सम्मान को देखने के लिए।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: अच्छा पूर्वी का, तुम्हें पता है कि जब आज सुबह सुबह मैं घर से निकल रहा था ना, तो दादी ने पीछे से आवाज लगी,
2: क्या?
1: अरे बेटा जाते हुए तुलसी में पानी डाल देना। और मैंने भी है ना पानी डाल दिया, लेकिन एक सोच में था कि दादी रोज रोज यही क्यों कहती है मुझे।
2: तो फिर तुमने क्या किया? दादी ने तो पूरा ज्ञान ही दे दिया होगा तुमको इस बात पर।
1: पर आज कुछ अलग हुआ, हर बार तो ऐसा ही होता है। आज वो बोले, सिर्फ इतनी सी लाइन ने पूरी बात को समेट दिया कि कुछ काम आदत नहीं विरासत होते हैं।
2: वाह, ये तो एक लाइन में पूरी किताब ही कह दी हो जैसे उन्होंने। सच में कई बार घर के बड़े हमें ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका मतलब हमें बाद में समझ आता है। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब समझ आता है कि उनकी ये बात कही हुई कितनी सच थी। चाहे वो हमारे संस्कृति के रिलेटेड हो या हमें कोई नॉर्मल ही चीज़ें क्यों ना सिखाई गई हो। जैसे कि हमने हमारे पहले टॉपिक में भी बात की थी कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, उसी तरह से दादी और नानी का ज्ञान हो उसको कभी हल्के में मत लेना।
1: ये बात तो पूरी सत्य है। आजकल हम नई नई चीज़ें सीखने में इतने व्यस्त हो गए हैं, जो पहले हमारे पास है उसी को हम भूलते जा रहे हैं।
2: जैसे बचपन में हमारी दादी नानियाँ हमें कितनी कहानियाँ सुनाया करती थी, अब कहानी सुनने की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली।
1: सच में
2: पहले शाम को पूरा परिवार साथ बैठा करता था, अब सब एक ही कमरे में होते हैं लेकिन फिर भी सब अलग अलग स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं।
1: पूर्ण सत्य इसमें। और मजेदार बात यह है कि दुनिया आज हमारी संस्कृति को जानना चाहती है, लेकिन कई बार हम खुद उससे दूर होते जा रहे हैं।
2: और ये सच में हो भी रहा है, क्योंकि लेकिन इस चीज़ को हमें सही करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी
1: है।
2: इसके लिए ज़रूरी है कि हम विरासत का मतलब समझें। विरासत का मतलब सिर्फ पुराने किले या महल नहीं होता है, बल्कि ये हमारी बोली है, हमारे लोकगीत है, हमारा पहनावा, हमारे त्यौहार हुए, खान पान हुआ, हम बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, घर की परंपराएं, ये सब भी हमारी विरासत ही होती हैं।
1: सच में मुझे तो याद भी आ रहा है, जब गांव में कोई मेहमान आता था, तुम्हें भी मालूम होगा कि
2: हाँ।
1: तो हम उसे बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते थे। भाई आए हैं
2: हाँ।
1: तो भाई साथ में भोजन करेंगे, ये तो मनवार में आता था हमारे। अब तो कोई बार लोग पूछते हैं कि भाई पहले मैसेज क्यों नहीं किया आपने, मतलब कोई आ गया आप पूछेंगे।
2: सही बात है, आजकल हाँ। तो बिना फोन किए मैसेज किए
1: आना मना है,
2: घर भी नहीं जा सकते हो। तो समय बदल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा अपनापन है उसे हमें बदलने नहीं देना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हमें आधुनिक बनना है हमें, लेकिन अपनी जड़ों को जुड़े रहना है, उन्हें भूलना नहीं है। और जो हमारे लिए मतलब कहते हैं ना, जो बीज है उसी को छोड़ देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। पेड़

0: की ऊंचाई तभी तक रहती है जब तक उसकी जड़ें मजबूत होती है, और हमारी संस्कृति हमारी असली जड़ें हैं।
1: सही कह रहे हो। और जड़ों की बात चली है तो एक काम आज ही हमें करना है। क्या है कि घर के किसी बड़े के पास आप बैठो, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानो, दोस्तों की अपने दादा दादी के पास बैठें या नाना नानी के पास बैठें और उनसे पूछें कि वो पहले क्या किया करते थे, उनकी कहानियाँ जानें, और वो सब कहानी जो है ना वो आपको किसी फिल्म से कम नहीं लगेगी।
0: सच में ये बात तो आपकी सत्य है, क्योंकि उनकी जो संघर्ष है, उनके जो अनुभव है, वो हमें किताबों में नहीं मिलने वाले। उन्होंने कैसे संघर्ष किया, रिश्ते कैसे निभाए उस समय के, कम साधनों में भी कैसे खुश रहे, और ये हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने ये डिजिटल कनेक्टिविटी के बिना भी लोगों से कनेक्ट रहे, और बहुत गहरे कनेक्ट रहे। चाहे वो 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से मिलते हो, पर मिलते ऐसे थे जैसे बस दूर हुए ही नहीं थे। ये सीख कहीं और नहीं मिल सकती।
1: एकदम सच कह रहे हो। और अगर आप अपने गांव से दूर रहते हैं ना दोस्तों, तो कभी समय निकाल कर वहाँ ज़रूर जाइए। बचपन की गलियाँ, पुराने पेड़, वही मंदिर और स्कूल सब आपको याद दिलाएंगे कि आपकी पहचान कहाँ से शुरू हुई थी।
0: बिल्कुल। और आप गौर भी कर सकते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके अंदर दुनिया भर की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। कौन कहाँ क्या कैसे किस प्रकार कर रहा है, कभी अपनी भी संस्कृति दिखाइए, अपनी बोली में दो लाइन बोलिए, अपने जो लोकगीत है वो कहिए, अपने घर की जो परंपरा है, अपने घर की जो रेसिपी है पारंपरिक, वो साझा कर सकते हो। हो सकता है किसी और को भी प्रेरणा मिल जाए कि किस प्रकार से हम ये चीज़ें खा पी करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे हमारे बीकानेर की ले लीजिए, हम गर्मी में अक्सर इमलानी का यूज़ करते हैं, तो आप उसकी
1: सच
0: भी
1: में हाँ,
0: रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये।
1: एकदम सच कह रहे हो। और यही सब तो हमारी विरासत भी है। हम क्या सोचते हैं कि विरासत जो है वो सिर्फ हमारे महल है या हमारी संस्थाएं हैं,
0: वो है।
1: वो सब विरासत है, लेकिन वो सब को जिम्मेदारी है सरकार को उन्हें सही से रखने की। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी इतना कुछ हमारी लाइफ में हमने हमारी दादा दादी ने देखा है, जो उनके हमारे ये बीच का जो डिफरेंस आ चुका है इस डिजिटलाइजेशन से कहें या जो हमारे मॉडर्ननेस है उसके कारण कहें, उन सबको भी संभाल के रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। अदरवाइज हम हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को क्या ट्रांसफर करेंगे ना।
0: बहुत ही गहरी सोच है। मैं जैसा तुमने कहा कि ये जो विरासत है, ये किले महल ये है, पर ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा खान पान, ये भी एक वो बैक ऑफ द स्टेज को चाहे फ्रंट ऑफ द स्टेज को, ये भी हमारी धरोहर है। इन्हें भी हमें संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर अगली पीढ़ी तक हमें कुछ सबसे कीमती पहुंचाना है, तो वो सिर्फ ज़मीन, मकान, पैसा ये नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उनसे भी ज़्यादा। पैसा, ज़मीन वो फिर ले लेंगे, पर संस्कृति भूल गए, संस्कार भूल गए, अपनी विद्याएं भूल गए, वापस नहीं आ पाएगी।
1: एकदम सच कह रहे हो, क्योंकि जो अपनी पहचान भूल जाता है ना, वो भीड़ में तो शामिल हो जाता है लेकिन अलग नहीं दिख पाता उस भीड़ से।
0: और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान हमें अलग बनाती है, हमारी अपनी विरासत जो है वह हमें अलग बनाती है। याद रखना, जिस प्रकार हम हमारी कई सारी जड़ी बूटियाँ भूल गए, जिस प्रकार हम हमारे कई सारे वेद भूल गए, जिस प्रकार हम हमारे कई सारे शास्त्र भूल गए, शस्त्र भी भूल गए, यानी कि शस्त्र विद्याएं मंत्रों से जो होते थे,
1: सच में सही
0: वैसे हम
1: कह
0: कहीं
1: रहे हो
0: अपने
1: तुम।
0: कल्चर को ना भूल जाए। जो गया उसको पाने का प्रयास करो, जो है उसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1: तो दोस्तों आज ही आप जब अपने घर जाएं, अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से या पढ़ाई करके जब भी फ्री हो, तो घर जाने के बाद में आराम से दो अपने बड़ों के पास बैठें, उनसे दो पल बातें कीजिए, अपनी मातृभाषा में उनसे कुछ बात कीजिए और अपनी संस्कृति के बारे में और भी जानें, और फिर उस पर गर्व ज़रूर महसूस कीजिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। तो हमें इस पर गर्व हमेशा महसूस करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि यही वो चीज़ है जो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को आगे देनी है, और यही सबसे ज़्यादा काम आएगी। और आज का आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, इसी की मैं प्रेरणा करते हुए आपको चलते हैं नए अगले गीत की तरफ।

0: से आपके कानों में एक लोक गीत कानों में आए और आपको महसूस हो कि अरे ये तो मेरे ही लोग हैं, मेरी ही जगह है, मेरा ही कल्चर है, क्या धुन होगी वो।
1: सच कहा तुमने। और ऐसी ही एक अनोखी आवाज है जिसे सुनते ही लगता है कि जैसे थार की हवाएं संगीत बनकर हमारे कानों के पास आकर बह रही हैं।
0: कहीं तुम मोरचंग की बात तो नहीं कर रही हो?
1: अरे तुमने तो एकदम सही समझ लिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कई श्रोता ऐसे भी होंगे जिनको मोरचंग सुनकर ऐसा लग रहा होगा अरे ये क्या है, क्योंकि हमारे कुछ छोटे छोटे युवा श्रोता भी तो हैं।
0: बिल्कुल है, और यही तो मजे की बात है कि कई बार हम गिटार सुनते हैं, पियानो, ड्रम्स, इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन अपने लोक वाद्य हमारे लिए नए बन जाते हैं।
1: मोरचंग दिखने में भले छोटा सा वाद्य यंत्र है, लेकिन इसकी आवाज कमाल की होती है। इसे होठों के बीच में रखकर और उंगली से इसकी धुन की जीभ का झंकृत किया जाता है, फिर जो ध्वनि निकलती है वे सीधे ही मन तक पहुंच जाती है।
0: वैसे ही जैसे हवाएं हमारे हमारे पास मतलब भीतर कहते हैं ना, हमें फील करवाते हैं, वैसे इसकी
1: हाँ
0: धुन भी हवाओं के साथ हमें फील कराती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ वादक की उंगलियां ही नहीं, उसकी सांस भी संगीत को हिस्सा लेती है। मतलब कहते हैं ना, उंगलियां ही धुन नहीं बना रही है, सांस भी साथ में लगी हुई है, तन मन से लगा हुआ है व्यक्ति।
1: जैसे कि हर कलाकार अपनी सांसों में धुन में से जान डाल दे रहा हो। सही
0: बस
1: कहा
0: वही
1: ना?
0: वही वही। और मुझे याद है कि एक बार जैसलमेर के पास एक लोक मेले में एक बुजुर्ग कलाकार मोरचंग बजा रहे थे, सुना तुम? और वहाँ
1: हाँ
0: कोई बड़ा स्टेज नहीं था, न तेज लाइटें थी, जैसे ना डिस्को लाइट्स के दो, चाहे फोकस लाइट के दो, लैम्प लाइट के दो, कुछ नहीं थी, लेकिन लोग बिना पलक झपकाए बस उसे सुनते जा रहे थे, क्योंकि वो मोरचंग है ही ऐसा, वो जोड़ के रखता है, मैग्नेट।
1: यही तो लोक संगीत की ताकत है, उसे सुनने के लिए शोर नहीं बस थोड़ा सा सुकून चाहिए।
0: लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज ऐसे कई लोक वाद्य हैं जो धीरे धीरे कम सुनाई देने लगे हैं हमें, कुछ क्योंकि उसका बजाने की कला लुप्त हो रही है, उसको सुनने वाले लुप्त हो रहे हैं, उसका शौक रखने वाले कम हो रहे हैं।
1: और ये वजह सिर्फ ये नहीं कि कलाकार कम है, बल्कि हम सुनना भी कम चाहते हैं।
0: बस बस
1: हमारी जो दुनिया है वो सारे के सारे वही बॉलीवुड म्यूजिक या इंग्लिश सॉन्ग्स सब उसी तरफ जाते जा रहे हैं और अपने लोक संगीत को जो है वो सब भूलते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल वही। वैसे ही जैसे आप सोचिए कि हमारी जो पीढ़ी है वो अपने ही लोक वाद्य को नहीं सुनेगी, तो आने वाली पीढ़ी इनके बारे में कैसे जान पाएगी? यदि आपने उस धुन को नहीं सुना, नहीं बजाया, तो उसको क्या पता चलेगा ऐसी भी कोई धुन है, ऐसा भी कोई वाद्य यंत्र भी है?
1: लेकिन पता है एक अच्छी बात ये भी है कि आज कई युवा कलाकार मोरचंग को नए अंदाज में दुनिया तक पहुंचा भी रहे हैं। लोक धुनों के साथ साथ आधुनिक संगीत में भी इसकी खूबसूरत झलक सुनाई देने लगी है।
0: यानी कि अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी आधुनिकता को अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ये शुरुआत सुनने से ही होती है। जैसे कि कभी भी किसी लोक कलाकार का कार्यक्रम मिले तो 5 मिनट तुम रुककर उसे जरूर सुनो, हो सकता है कि वही 5 मिनट में आपकी पसंद ही बदल जाए।
0: और अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग कलाकार रहता है तो उनसे मिलिए और थोड़ा पूछिए, यकीन मानिए कि उनके पास सिर्फ संगीत नहीं होगा, अनुभवों का भी खजाना होगा, वो खजाना जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है।
1: तो कई बार हम बड़े कलाकारों को देखने के लिए दूर दूर तक भी चले जाते हैं, लेकिन अपने गांव या शहर के लोक कलाकारों की कला को पहचान ही नहीं पाते हैं।
0: जबकि सच यह है कि संस्कृति किताबों में नहीं, कलाकारों में जिंदा होती है। हो सकता है उसको बजाने का ज्ञान किताबों में लिख दिया गया हो, उसकी जो धुन है उसके बारे में बता दिया गया हो, पर जो कलाकार की सांसों के साथ जब वो मिलेगी ना धुन, तब आपको महसूस होगा कि असलियत क्या है।
1: और दोस्तों, कलाकार तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसके श्रोता साथ देते हैं।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब कहीं आप मोरचंग की मधुर ध्वनि को सुने तो जल्दी से आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके उसे अपनाइए। 2 मिनट रुकिए, सुनिए और महसूस कीजिए, शायद आपको अपनी मिट्टी की खुशबू उसी धुन में मिलेगी, अपने राजस्थान की खुशबू उसी धुन में मिलेगी।
1: क्योंकि आधुनिक होना एक अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अपनी पहचान को साथ लेकर चलना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित

0: वैसे अक्षय, तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी।
1: पूछो, बिल्कुल पूछो, लेकिन एक शर्त है मेरी।
0: क्या?
1: सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब ऐसा ना हो कि ढूंढने पे भी ना मिले।
0: अरे नहीं, चिंता मत करो, इतना ऐसा कठिन सवाल नहीं पूछने वाली मैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आवाज तुमने सुनी है और बिना देखी पहचान लिया हो कि ये तो अपने राजस्थान की है?
1: अरे ये तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्यादा हुआ है। तुम ऐसा समझ लो जैसे कि कहीं आप दूर खड़े हो और ऊंट की जो घंटी होती है ना गले में बांधी होती
0: हाँ
1: है, वो आपको सुनाई दे, और या फिर आप रेगिस्तान की शाम में बैठे हो और अचानक

0: तेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: तो साथियों हमने पूछे थे प्रश्न दो, उनमें जो पहला प्रश्न था उसका सही जवाब है नितिन रमेश गोकर्ण।
1: और दोस्तों जो हमारा दूसरा सवाल था कि सुरक्षित साइबर स्पेस का ऑपरेशन कहाँ शुरू किया गया है, तो उसका जवाब है गुजरात।
0: उम्मीद करते हैं आपने सही जवाब सोचे होंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, अगले जोश के साथ, उमंग के साथ। तब तक मैं अक्षय आचार्य
1: और मैं पूर्विका पारिक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे सोनू निगम के गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7:00। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय हैं बाजरा की उन्नत किस्में, वृक्षारोपण और वन महोत्सव, बेहतर जल उपयोग के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, वर्षा काल में पशुशाला की सार संभाल और इन सब के साथ कार्यक्रम में लोकगीत और लोक भजन भी होंगे। आज संध्या 7:30 से हम आपको सुनवाएंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। ये सीधा प्रसारण हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तो सुनिएगा लाइव क्रिकेट कमेंट्री संध्या 7:30 से।

ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था,

0: जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं सोनू निगम। श्रोताओं, सोनू निगम भारत के सबसे लोकप्रिय, बहुमुखी और तकनीकी रूप से परफेक्ट प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। उनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की गहराई, आधुनिक संगीत की ऊर्जा और भावनात्मक अभिव्यक्ति का अनूठा संगम

देखने को मिलता है। उन्हें अक्सर महान गायक मोहम्मद रफ़ी का आधुनिक उत्तराधिकारी यानी मॉडर्न रफ़ी भी कहा जाता है। 30 जुलाई 1973 को जन्मे सोनू निगम का के पिता अगम कुमार निगम भी एक गायक थे। सोनू निगम ने केवल 3 वर्ष की आयु से अपने पिता के साथ मंच पर गाना शुरू कर दिया था। उनका पहला प्रसिद्ध मंचीय गीत था क्या हुआ तेरा वादा, जिसे मूल रूप से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण उन्होंने प्रसिद्ध गुरु उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां से प्राप्त किया। इसी मजबूत प्रशिक्षण के कारण वे कठिन से कठिन राग आधारित गीत भी सहजता से गा लेते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया हुआ एक प्रसिद्ध गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

1990 के दशक में सोनू निगम अपने करियर के लिए मुंबई आए। शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें टीवी कार्यक्रम सारे गामा के होस्ट के रूप में लोकप्रियता मिली। उसके बाद फिल्मों में लगातार अवसर मिलने लगे। सोनू निगम के गाए हुए कई गीत सदाबहार माने जाते हैं। कल हो न हो, अभी मुझ में कहीं, सूरज हुआ मध्यम, संदेशे आते हैं, ये दिल दीवाना, मैं अगर कहूँ, और दो पल और पीयू बोले। सोनू निगम ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, नेपाली, मलयालम, भोजपुरी, पंजाबी सहित 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। विशेष रूप से कन्नड़ फिल्म उद्योग में भी उन्हें असाधारण लोकप्रियता मिली है। सोनू निगम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे पद्मश्री 2022 में, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स वगैरह उन्हें मिल चुके हैं। कई फिल्मों में उन्हें अभिनय करने का मौका भी मिला, जैसे लव इन नेपाल, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। हालांकि बाद में उन्होंने अभिनय छोड़कर पूरी तरह से गायन पर ध्यान केंद्रित कर लिया।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, सोनू निगम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वाइड वोकल रेंज, अत्यंत विस्तृत स्वर सीमा, शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़, रोमांटिक, सूफी, गजल, भजन, पॉप, रॉक और देशभक्ति गीतों में समान दक्षता, और साथ ही मंच पर बिना ऑटोट्यून के प्रभावशाली लाइव प्रस्तुति। हाल ही में सोनू निगम ने बताया कि वे नसों से संबंधित एक दर्दनाक स्वास्थ्य समस्या का उपचार करा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने निर्धारित कंसर्ट पूरे किए और बाद में स्वास्थ्य में सुधार की जानकारी भी साझा की। श्रोताओं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनू निगम ने अब तक 6000 से भी ज़्यादा गीत रिकॉर्ड किए हैं। वे संगीतकार, डबिंग कलाकार और अभिनेता भी रहे हैं। देश विदेश में नियमित रूप से लाइव कंसर्ट करते हैं और उन्हें आधुनिक भारतीय संगीत के सबसे प्रभावशाली गायकों में गिना जाता है।

सोनू निगम ने कई बार कहा है कि उनके आदर्श गायक मोहम्मद रफ़ी है। उन्होंने रफ़ी साहब के अनेक गीत मंच पर गाए और बचपन से ही उनकी शैली का अध्ययन किया। हालांकि समय के साथ उन्होंने अपनी अलग गायकी विकसित की, जिससे उनकी अपनी विशिष्ट पहचान बनी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्नड़ फिल्म उद्योग में भी सोनू निगम अत्यंत लोकप्रिय हैं। वहाँ उन्होंने सैकड़ों गीत गाए हैं, कई क्षेत्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। कई कन्नड़ प्रशंसक उन्हें अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रिय बाहरी पार्श्व गायक मानते हैं। सोनू निगम ने विशेष रूप से शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, सैफ अली खान, विवेक ओबराय, इमरान हाशमी और अजय देवगन पर फिल्माए गए गीतों में लोकप्रियता हासिल की है। उनकी आवाज़ इन कलाकारों के व्यक्तित्व के साथ सहज रूप से मेल खाती है। जतिन ललित, शंकर एहसान लॉय, एआर रहमान, अन्नू मलिक, विशाल शेखर, प्रीतम और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े संगीतकारों के साथ सोनू निगम ने काम किया है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए डॉक्टर अशोक प्रेम को, नमस्कार। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई।

0: वो राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होमर्ज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होमर्ज जल डमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कोटपुतली बहरोड के मुंडावर में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने शाहजहांपुर में ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए देशवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने वहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। भारत में डिजिटल कानूनों के तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी

0: समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे, ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,000 से अधिक श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि लगभग 2,000 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालटाल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सेना के ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस के बीच टक्कर में एम्बुलेंस में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22LGW के पास हुआ। गंभीर घायलों को तत्काल सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में जहां एक और कई जिले मॉनसून की बारिश से तर हो रहे हैं, वहीं कई जिलों को बरसात का इंतजार है। राजधानी जयपुर में सुबह से चल रही बादलों की लुका छिपी के बाद दोपहर में कई जगह तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाई माधोपुर में सुबह झमाझम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पाली और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर शाम को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर बालोतरा और सिरोही जिले में सुबह से उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में आगामी 5-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज लगभग सभी संभागों के जिलों में तेज बारिश अलर्ट है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
2: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष

0: रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। दो पारियों में हुई ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर जिले में 35 और भीलवाड़ा जिले में 41 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा रखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राज में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव

0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। अब राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे राजधानी जयपुर में यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बच सकेगा। 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोड़ी तक का सफर आसान होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। इस रूट को ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा पिंजरा पोल गौशाला तक बनेगा और दूसरा पिंजरा पोल से जवाहर सर्कल होते हुए एयरपोर्ट तक का 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए खासा कोठी में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को एक नई गति देगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया तथा नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। हाल ही में राजधानी में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समारोह का समापन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सहकार सप्ताह के तहत जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सबके लिए, सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीते दिनों जिले में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. BC राय की स्मृति

0: मनाए जाने वाला डॉक्टर्स डे राजधानी में समारोह पूर्वक मनाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स ने निस्वार्थ सेवा की शपथ ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबरां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राजमाए विधि मंत्रालय री कानी सु दो दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। और राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सु तरबतर, आज घनकर जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यां खातिर 25,000 करोड़ रुपया री मुख्य सहायता रकम जारी करी। वणा 1 जुलाई सु इन अभियान रे सफलतापूर्वक लागू होने माते खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत रकम जारी करने रे पाछे श्री सिंह सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां साथे वीबीजी रामजी योजनावां रे कार्यान्वयन री समीक्षा भी करी। वणा कयो के आज जारी करी जी पहली किस्त रो लखस ओ पक्को करनो है के राज्यां रे कने पुख्ता रकम होवे ताकि मजूरी रो भुगतान 15 दिना माए करयो जा सके। वणा कयो के मनरेगा ने लागू होने माए 3 बरस सु 32 रो बखत लाग्यो हो, जदे के विकसित भारत जी राम जी ने पूरे देश माए सिर्फ 1 दिन माए लागू कर दियो गयो।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान कयो के वीबीजी रामजी योजना रे तहत मजदूरी दरामाएं औसतन लगे टके 10% री बढ़ोतरी करी जी है। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ओ फैसलो पश्चिम एशिया संघर्ष माए युद्ध विराम रे पाछे होर्मुज जल डमरू मध्य सु प्राकृतिक गैस री आपूर्ति फेरू होने रे पाछे करयो गयो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना माए कयो है के प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 माए बदलाव करयो गयो है। इन बदलाव रे तहत वहाँ खास आपातकालीन प्रावधाना ने हटा दियो गयो है, जिन रे तहत सरकार ने देश माए उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी रे आवंटन माए प्राथमिकता देने री इजाजत ही। होर्मुज जल डमरू मध्य सु एलएनजी री खेप माए रुकावट आने रे पाछे इन बरस मार्च माए आवश्यक वस्तु अधिनियम रे तहत ओ आपातकालीन हुकुम जारी करयो गयो हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड रे मुंडावर माए 24 करोड़ रुपया रे विकास कामारो उद्घाटन करयो। वणा शाहजहांपुर माए ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन रो लोकार्पण भी करयो। इन मौके माथे वणा कयो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राजस्थान ने ऊर्जा खेतर माए बड़ी सौगात देता हुआ देशवासियां रो ओ सपनो पूरो करयो है। वणा यमुना जल रे ऐतिहासिक समझौते रो जिक्र करता थका कयो के इनसु प्रदेश रे सूखा प्रभावित खेतरा ताई पानी पहुंचाने रो मार्ग खुल्यो है। केंद्रीय मंत्री वठे न्यारा न्यारा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम माए भी भाग लियो। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम माथे फीस वाला विज्ञापना माए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रे प्रसार ने लेर मेटा ने कड़ी चेतावनी जारी करी है। सरकार इंस्टाग्राम ने एड़ी विषय वस्तु ने बधावो देवन और इंड्री पहुंच ने सोरो बनावन वाला

0: विज्ञापना और सामग्री ने बंद करने रो हुकुम दियो है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा सू 7 दिनारे माए स्पष्टीकरण मांगियो है। सरकार इन बात री समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म भारत रे मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों रो अनुपालन करियो है या नहीं। भारत माए डिजिटल कानूना रे तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री रो वितरण एक अपराध है। इनसू पहले मंत्रालय वहाँ रिपोर्टा रो संज्ञान लियो हो जिका माए कहो गयो हो कि इंस्टाग्राम माथे कुछ एक आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही है जिको बाल यौन शोषण ने बढ़ावो देवे है और अहलकारा ने मेटासू जवाब मांगने रा हुक्म जारी करया है। ऐ खबर आप आकाशवाणी रे जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रहा हो। सिरोही जिले रा आबू राजरा ज्ञान सरोवर माए विधि और न्याय मंत्रालय री कानिसू 2 दिन रो रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज पूरो वियो। समापन सत्र माए संबोधित करता थका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो के एड़ा शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास रे माध्यम सू कार्य कुशलता सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने नूवी ऊर्जा देवेला। वणा कयो के ए शिविर विकसित भारत रा संकल्प ने साकार करण माए महती भूमिका निभाने खातिर सगड़ा ने संकल्पित भी करे। श्री मेघवाल कयो के शिविर माए मंथन रे पाछे तैयार करियो गयो घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार ने तेज करेला।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर माए देश भर सू आया विधि विशेषज्ञ न्यायिक अहलकारा और मंत्रालय रा मोटा अहलकार न्यायिक सुधारा तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जड़ा मुद्दा माथे न्यारा न्यारा सत्रा माए चर्चा करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली माए राखी जा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 80वां संस्करण माए भाग लियो। इन अभियान रो लखस लोगों रे व्यवहार माए बदलाव लाणो और वाने 32 सक्रिय जीवन शैली री कानी ले जाणो है। मीडिया सू बात करता थका केंद्रीय मंत्री कयो के साइकिल चलाणो हृदय शरीर और मन ने स्वस्थ और तंदुरुस्त राखने माए सहायक है। श्री मांडविया साइकिल चलाने रा न्यारा न्यारा स्वास्थ्य लाभा रो भी जिक्र करियो। वणा इनने शहरा माए प्रदूषण और यातायातरी समस्या रो समाधान भी बतायो। श्री गंगानगर जिले रा सूरतगढ़ खेतर माए आज सुवारे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 माथे सेना रे ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस रे बीचे टक्कर माए एम्बुलेंस माए सवार 3 जना री मौके माथे ही मौत वेगी। हादसा माए 2 जना गंभीर रूप सू घायल वे गया। हादसा रे पाछे हाईवे माथे कुछ बखत खातिर यातायात प्रभावित रियो। ओ हादसो सूरतगढ़ सदर थाना खेतर माए 22 LGW रे कने वियो। गंभीर घायला ने तुरंत सूरतगढ़ रे राजकीय सफाखाना पहुंचायो गयो। और अब मौसम प्रदेश माए जठे एक कानी कई जिला मानसून री बिरखा सू तर हो रिया है वठी ने दूजी कानी कई जिला बरसात री उड़ीक कर रिया है। राजधानी जयपुर माए सुवारे सू चाल री बादलां री लुका छुपी रे पाछे दोपहरा माए कई जगहां तेज और कठी कठी हल्की बिरखा हुई। सवाई माधोपुर माए सुवारे झमाझम बरसात हुई वठी ने हनुमानगढ़ माए भी जिला मुख्यालय समेत भादरा संगरिया और पल्लू खेतर माए तेज बिरखा दर्ज करी जी। पाली और आसे पासे रा खेतर माए चोखी बिरखा होने सू काश्तकार खरीफ फसल री बुआई री तैयारियां शुरू कर दी है। उदयपुर माए सिंजा हुई मूसलाधार बिरखा सू शहर रा कई इलाका माए पानी भर गयो। वठीने बालोतरा और सिरोही जिला माए सुवारे सू उमस और गर्मी सू जनजीवन घणो प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब राज्य रा पूर्वी भागा माए आवता 5-6 दिना माए मानसून सक्रिय रहने और घनकर थोड़ा माथे हल्की सू मध्यम बिरखा और कठी कठी भारी बिरखा री आस है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान माए काले सू भारी बरसात री गतिविधियां माए और बढ़ोतरी वह सके है। आज लगे टके सगड़ा संभागा रा जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट है। भरतपुर रा विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए प्रवासी परिंदा ने देखने खातिर आ दिना घनी तादाद माए पंछी प्रेमियां रो आणो जारी है। माणा खबर नवीस बतायो के पंछियां रा आकर्षक समूह सैलानियां ने रोमांचित कर रिया है।
2: केवला देव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन गुलाबी चोंच और संतुलन

0: मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। यह पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: अमरनाथ यात्रा रा पहला दो दिना माए 32,313 श्रद्धालु पवित्र गुफा मिंदर माए दर्शन करया। इन बीचे श्रद्धालुआ रो चौथो जत्थो आज सुवारे जम्मू रा भगवती नगर निवासों यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे रवाना हुआ। इन जत्थे माए 291 वाहना माए 6,731 श्रद्धालु भेड़ा है। इन माए सू 4,032 श्रद्धालु 139 वाहना माए पारंपरिक पहलगांव मार्ग सू जा रिया है, जदके लगे टके 2,000 श्रद्धालु 152 वाहना माए बालटाल मार्गरी तरफ सू जा रिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री कानीसू राखी जी लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर माए दो पारियां माए हुई। परीक्षा रे सफल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन खातिर प्रशासन सगली तैयारियां करी ही। दो पारियां माए राखी जी आ परीक्षा सुवारे 9:30 सू दोपहर 12:30 ताई और दूजी पारी माए दोपहर 3:00 सू सिंजा 6:00 ताई हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भारत माए लीवर री बीमारी और टाइप 2 मधुमेह सू निपटने रे खातिर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने रो हेलो करियो है। नवी दिल्ली माए लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क री तीजी वर्षगांठ माए डॉक्टर सिंह कहो कि ए रोग अब पहली री तुलना माए कमर कम उम्र रे लोगों माए भी देखा जा रहा है। वणा कहो कि देश री जेनेटिक बनावट पेट रे आसे पासे चर्बी री 32 समस्या और भारतीयों री शारीरिक बनावट रे कारण लोगों माए मधुमेह फैटी लीवर और हृदय रोग रो खतरो बत्ती है। डॉक्टर सिंह कहो कि वैज्ञानिक तरक्की रे साथ है बड़े पैमाने माथे जन जागरूकता और व्यवहार माए बदलाव सू इन चुनौती रो निपटने रो निपटो जा सके है। और आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुनो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यों ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सू आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राज माए विधि मंत्रालय री कानीसू दो दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। अर राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सू तरबतर आज घनकर जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट। इंडे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठई पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9:00 हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर संध्या के 7:00 हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालू ग्रामीण भाई बहनों ने राकेश कुमार जोशी रा गणान गणा राम राम। देखो भाई, बार आप समाचार सुनिया कि आपने राजस्थान में मानसून लगभग सक्रिय हो गया है। चारूखानी जी का जिला है बीकानेर जिले रे चारूखानी, सगला जिला में कठी ज़्यादा कठी कम बिरखा जी की है बा हो रही है, और आपने बीकानेर क्षेत्र में आप बिरखा ने अड्डी क्रिया हो सके काल ही हो जाए और हो सके दो दिन बाद ही हो। और वो जी को मौसम है बिरखा रो मौसम एरी जी की उड़ी के बिरो इंतजार आप रही हुई कोनी, उड़ीक यह है कि भी मैं तो आ जाए नहीं तो जी सोर हो जाए, और जी सोर हुए धरती रो आपनी जी की माटी है अपना जी का खेत है बे बिरखा ने उड़ी क्रिया है। किसान आंख्या जो बाट जो रही है बिरखारी, और एक खतर जो रही है कि आपने जी की मानसून जी की

0: शहर एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफ़ी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
4: तो संदेशा सुनियार, इसो पहला आप जिको गीत सुनियो, कालू राम प्रजापति गायड़ो, सुगम सुगन बताए सुगम सुगन चढ़ी। देखो भया, अबार आपा बात करी मैं पानी री, बरसात री, और वो जो बगत है, अबार बरसात रो बगत है, मानसून रो बगत है। पूरे भारत में बिरखा जिकी है बा आप रो रंग दिखावे, और ये बगत में आपने वृक्षारोपण करनी चाहिए। अपनी सरकार जिकी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अलग अलग अभियान, अलग अलग संदेशा लेते हुए पूरे भारत में पेड़ पौधा ने लगाने रो जागरूकता जी की है बा अपन ने बतावे। और आपने राजस्थान में भी वृक्षारोपण और वन महोत्सव ये जुलाई रे महीने में मनाई छे। हर वर्ष री भांति ई बात भी अपन देखा कि चारों खानी इरी चर्चा है, चाहे कोई स्कूला हो, स्कूल रे टाबर हो, चाहे कोई संस्थावां हो, अस्पताल हो, जठे भी आपने उचित जगह मिले, बट आपने देश रे हर नागरिक ने पेड़ लगाना चाहिए। उद्देश्य भी वही है वृक्षारोपण और वन महोत्सव मनाने रो, कि अधिक से अधिक आप पेड़ लगावा, पर्यावरण संरक्षण रे प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ावा, और हरियाली जी की है भी नापा

वन महोत्सव री जिकी शुरुआत है बा आपने देश में 1950 हूँ शुरू होगी और बी भगत आपने कन्हैयालाल माणिकलाल जी मुंशी द्वारा इरी शुरुआत हुई। पेड़ पौधा रा लाभ आपा जाना कि पेड़ पौधा आपने प्राण वायु ऑक्सीजन देवे, प्रदूषण कम करे, आपने में पानी रो जिको चक्र है वर्षा चक्र है बिने संतुलित करे और मिट्टी रे कटाव ने जिकी है पेड़ पौधा बे रोके। पक्षियां ने और वन्य जीवारो जिको आश्रय है रहना स्थान है वो पेड़ पौधा ही होया करे। अपन ध्यान है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में पूरी दुनिया में बार चर्चा चल रही है, अपा अखबार में पढ़ियो भी है, समाचार में सुनियो भी है कि इस साल यूरोप में बहुत धाकड़ गर्मी पड़ रही है और भी गर्मी से यूरोप रा लोग बहुत परेशान है और वो जिको अलग अलग देशा में देख रहा हाँ कठी बाढ़ अति आ रही है, अति बारिश हो रही है, ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो मौसम रो जिको असंतुलन है बिरी पीछे कारण है जलवायु परिवर्तन। जब पेड़ पौधा आपा लगावा तो जलवायु परिवर्तन रे प्रभाव ने आपा कम कर सका और धरती में विभिन्न प्रकार की गैसा रो संतुलन कर सका और धरती ने जीने योग्य बना सका। वन महोत्सव में आपा पेड़ पौधा लगावा, जागरूकता लावा लोगा में और इस खातर स्कूल स्तर पर भी स्कूल जिका मैनेजमेंट है, स्कूल का प्रबंधन लोग है वे प्रयास करें स्कूल में भांत भांतरी निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता बच्चा सु करवा परो, बच्चा में भी अगली पीढ़ी में भी एक भाव जागृत करा कि अपने देश में अपनी धरती माथे अपने जे ये धरती रो अस्तित्व बचा रखना है तो धरती माथे पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और असंभव हो तो अपने अपने स्तर पर पौधा रो वितरण करा और पेड़ पौधा रो देखभाल करने रो संकल्प लेवा, पेड़ पौधा लगावा सागे सागे भी ने जब तक पेड़ बड़ो नहीं हुए भी भगत तक आपा भी देखभाल करा। और एक खास बात और है, पेड़ लगाने जी की जगह आपा चुना बा जगह एकदम सही होनी चाहिए। यहाँ नहीं आज पेड़ लगायो, पाँच साल में पेड़ बड़ो हो और बाद में वो कठी बीच में आ गयो, सड़क रे बीच में आ गयो, मार्ग रे बीच में आ गयो, तो पेड़ इसी जगह लगावा जठे 25 साल तक आगे काटने जरूरत नहीं पड़े। तो आज ऐसा अगली बात का ध्यान रख परो, ई भगत आपने अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और अब थाने सुनावा हो एक और फूटरोसो गीत धीरा सेनरो गायडो केसर की क्यारी, लो सुनो सा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: देखो भाई, बरसात रो मौसम है और ई बगत आपने आपने पशुओं जी को रहने रो स्थान है नी बीरी आपने देखभाल करनी बहुत जरूरी है, बहुत शांत रहो बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात रे मौसम में पशुआ ने रोगा सू बचाने खातर और दूध उत्पादन बनोड़ो रहे, दूध उत्पादन गिरे नहीं, इन खातर पशु जी की आवास व्यवस्था है बिन आपने शांत रखनी जरूरी है। एक तो देखा कि जिको भी छपरो बनोड़ो है वो ऊपर सू टपकनो नहीं चीज है, तो छपरे ऊपर सांतरो कोई बड़ो त्रिपाल है, कोई मेणियो है, कोई प्लास्टिक है वो लगावा जिके सु माइंड है पानी टपके नहीं। जिको छपरो है बिर माया जिको फर्श है वो सूखो रहे, साफ एकदम स्वच्छ रहे और बठे कठी भी किसी भी प्रकार पानी रो जमाव नहीं होना चाहिए। कहने मतलब वो है कि पानी री निकासी जिकी है बा चोखी तरह से होनी चीज है। पशुआ ने अपने सूखो और स्वच्छ चारो देनो है। कई बार बरसात रहे मौसम में देखा कि आपनो चारो है जिको कठिन कठिन भीग जाया करे, तो भीगड़ो चारो आपने नहीं देनो है, सूखो और स्वच्छ देनो है और सड़ो गड़ो चारो नहीं देनो। पीने खातर साफ और ताजो पानी उपलब्ध करावा पशुओं ने, और वो भी ध्यान रखा कि गर्मी रे मौसम में आपने देखा कि पानी की कमी नहीं हुए पशु रे शरीर में, अब भी बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। मच्छर है, मक्खी है, अन्य प्रकार है जिका कीट पतंग आवे बियारे नियंत्रण री व्यवस्था भी रखा कि वे भी पशुओं ने परेशान नहीं करे। नियमित रूप से जिको मानसून पहला टीकाकरण हुए जिका चाहे रोगों बचाने खातर, तो आप टीकाकरण करा लियो एला नहीं तो आप करावा और क्रमी

सक दवा जिकी है बा भी आपने भगत माथे पशुओं ने जरूर देवा। जे पशु किसी भी तरह रो असहज है बीमार लागे तो भी पशु ने अपने अलग बांधनो बहुत जरूरी है। और जे अपने लागे कि पशु घरेलू उपाय सु ठीक नहीं हो रही है तो अपने तुरंत डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक जिका डॉक्टर है बियाँ सु मिला बियाँ सु सलाह लेवा और पशु ने उचित उपचार सु उपचारित करावा। पशुशाला में पर्याप्त रूप सु हवा और प्रकाश की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जे हवादार आपनो जिको छपरो है वो नहीं हुए तो पशु भी थोड़ी गर्मी लगे पशु ने भी एक खातर अपन वो ध्यान रखना है कि भी छपरे में चौकी तरह से हवारो आनो जानो होवे सूर्य रो प्रकाश भी आवे और रात में भी प्रकाश की व्यवस्था अपना करा। जमी माथे पशुओं खातर माटी जिकी है बा नियमित रूप से आप बदलता रहा जिके सु पशु ने आराम मिले। बरसात रे मौसम में जिका रोग होया करे बे होया करे गलघोंटू लंगड़ा बुखार खुरपका मुँहपका रोग और कृमि रो संक्रमण इन खातर आपने बतायो कि टीकाकरण करना जरूरी है और कृमिनाशक दवा जिकी है बा आपने पशु ने पिलानी बहुत जरूरी है। तो जे अपनी पशुओं रो रहने रो पशुशाला जिकी है वह स्वच्छ है तो पशु भी जिको है स्वस्थ रहसी और जब पशु स्वस्थ रहेला तो उत्पादन भी चौखो होवेला। अब थाने सुनावा एक और हरजस हनुमान दास और साथियों गैडो सुनो।

तो हर्जे सुनियो सा हनुमान दास और साथियारो गायड़ो। देखो किसान भैया, आपने राजस्थान में आपनो ध्यान है कि पानी री कीमत आप जाना कि अठ जिकी बूंद बूंद भी पानी है नी वो अपन खातर बहुत कीमती है। और आपनो राजस्थान पानी री कमी रे रूप में पूरे भारत में पूरे विश्व में जानी जाए कि वो रेगिस्तान जी को है अठ पानी री कमी है और पानी घणो ऊंडो है। तो जल व्यवस्था उपलब्ध रहे सबला लोगा खातर और खेतीबाड़ी हो पशुपालन हो चाहे घर में काम आने वालों पानी हो इन खातर सरकार जिकी है बेहतर जल उपयोग खातर केंद्र सरकार कई तरह की योजनावां जिकी है वे राजस्थान खातर विशेष तौर पर बनावे। जिके में पहली योजना तो आई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत ने पानी और प्रत्येक पानी री बूंद सो अधिक फसल लेनो इरो उद्देश्य है। ई कृषि योजना रे अंतर्गत बूंद बूंद और फवारा सिंचाई ने बढ़ावो देने खातर आज की योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इन खातर ई योजना रो प्रावधानी में देवड़ो है कि भी हर बूंद रो उपयोग में हो खेतर में पानी रे उपयोग री दक्षता बढ़ानो उद्देश्य है ई योजना रो। दूसरी योजना है जल शक्ति अभियान। बरसात रे पानी ने आप इकट्ठो किया कर सका और अपनी जमीन में जी को पानी है बीरो पुनर्भरण कर परो और इसु संबंधित अभियान जी को है वो जल शक्ति अभियान रे अंतर्गत मान लीजिए। यानी कहना मतलब वो है बरसात रे पानी ने जो आप इकट्ठो करा तो भी उपयोग लेवा और बरसात रे पानी ने जी को फालतू फिजूल में इन्हें इन्हें भेज जाया करे बिने आप जमीन रे माया उतारा तो आपनो भौमजल ऊंचो आनो चीज है। अटल भूजल योजना इरो स्तर भी इरो उद्देश्य भी वही है कि आपने जमीन रे माया भौमजल रो स्तर सुधारा और लगातार भौमजल रो आप उपयोग कर रही है ट्यूबवेल में लेकिन भूजल रो स्तर सुधारनो भी बहुत जरूरी है। ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन ने बढ़ावो देनो यही जल जीवन मिशन है। गाँव में हर घर तक नल सु पानी पहुँचाने लक्ष्य है। अमृत सरोवर मिशन है तालाब और जलाशय रो निर्माण करनो आजिका बनोड़ा है बिहार पुनर् उद्धार करनो बिहारों वर्षा जल संचयन करनो और भूजल ने वापस रिचार्ज करनो और राष्ट्रीय जल मिशन जल उपयोग री दक्षता बढ़ाने खातर नई तकनीक का काम में लेनी और जल री बर्बादी ने कम करने रो उद्देश्य ले प्रो ए जितनी भी योजनावां है ए अपनी केंद्र सरकारी योजना चल रही है। और अब देखो बातें तो घनी होगी अब घड़ी इशारो करे कि कार्यक्रम रो भगत पूरे हो रही है। सीख देव आपरे साथी राकेश कुमार जोशी ने मोकला मोकला राम राम।

0: ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट
1: 26 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the final T20 cricket match to be played between Australia and England of the ICC Women's T20 World

0: भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोश

0: जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम

0: बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का

0: काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: between Serbia's Novak Djokovic and Roman Sofalian of Russia is underway. Later tonight, top seed Jannik Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave revered shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: ड्रिंक्स की बात की पहली ही गेंद पर ये चार रन मिले। बाएं हाथ का खिलाड़ी वैसे ही आकर्षक होता है। पहली गेंद की लेंथ को पहचानकर अपने आप को पोजीशन कर रही थी। कोई बहुत ज्यादा डग आगे नहीं निकाला उन्होंने, केवल अपने को संतुलित कर थोड़ा हल्का सा पैरों पे फिरकी होकर पॉपिंग क्रीज के पीछे की ओर घुमा दिया चार रनों के लिए। 97 रन चार विकेट पर, और इस बार एक सिंगल जरूर मिलेगा। दो फील्डर बाउंड्री लाइन के करीब से आ रहे हैं उसको उठाने के लिए, और एक रन से संतुष्ट हैं। नौवां चौका था पारी का, एक छक्का है। ये अनुमान लगाना होगा, पिच की तासीर को आप समझ गए। सिवरबर्न कप्तान हैं, स्वयं फैसला कर सकती हैं कितना आक्रामक उनको होना है, पिच कितना अलाउ कर रही है और कितने रनों की आवश्यकता होगी। भाई एक जवाब तो सीधा साधा है, ज़्यादा से ज़्यादा रन चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो आपको बख्शते कहाँ हैं। और बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो लूसी हैमिल्टन जो नंबर 11 पर आएंगी, वो अंडर 19 कैप्टन है और नंबर 3 पर खेलती थी। 98 रन चार विकेट पर। सदरलैंड की तीसरी गेंद 15वें ओवर की, और शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गई, और फिर घूमकर उल्टा खेला उसको, ऑन साइड में मोड़ दिया उस गेंद को, बाउंड्री लाइन के करीब वो गेंद फील्ड हो रही है, तब तक पलटकर आती है क्या दूसरे रन के लिए। देखिए रफ्तार में लगातार परिवर्तन, केवल 103 क्लिक्स की थी ये गेंद। 99 रन चार विकेट पर स्कोर है, केवल एक रन मिला उस गेंद पर। अनुमान लगाया था थोड़ी सी वहां पर समझ होती, पहला रन तेजी से लेती तो शायद हो सकती थी कि वो दूसरे रन के लिए पलटकर आ सकती थी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, इस बीच ये गेंद धीमी गेंद थी आगे, और क्योंकि गेंद की रफ्तार कम थी संतुलन चूके, लेकिन संतुलन फील्डर का भी चूका और बाउंड्री लाइन से जाकर टकरा गई, चार रन मिल गए इंग्लैंड।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: और इसके साथ ही इंग्लैंड के पारी के 100 रन पूरे हुए 14.4 ओवर की बैटिंग करने के बाद। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला उसको, और डाइव लगाते हुए फील्डर के हाथ से लगने के बाद गेंद जाके टकरा गई, वेयर हैम वहां पर मौजूद थी। इस बीच ये गेंद सदरलैंड की अगली गेंद, ड्राइव किया और गेंद जा रही है फील्डर के पास, एक रन लेने से नहीं रुक सकेंगे। एक सौ चार चार विकेट पर, रन बनाने का औसत अब पहली बार 7 के ऊपर जा रहा है। फील्डर नहीं बल्कि बॉलर भी जिस तरह से फिसली थी उस गेंद को लेने के लिए, हाथ ऊपर किए थे उन्होंने, उनके उंगलियों के पोरों से लगकर गेंद पीछे की तरफ चली गई थी। सदरलैंड का ये ओवर 15वां ओवर है पारी का, एक गेंद शेष है, फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। वेरम आमतौर पर सब कुछ झोंक देती हैं, डाइव लगाई थी, पसर गई थी वहां पर, लेकिन फिर भी उसको हाथ से छिटकी हुई गेंद

0: वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,000

0: ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. Skipper Natsir Brunt was top scored with an unbeaten 58 runs, while Freya Kemp made 44 runs. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Standard Time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: What? गेंद काफी फुल लेंथ की थी, अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: अब केवल 7 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए। और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लौ जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपिश ड्राइव मिड ऑफ पर, दायरे के अंदर वो कैच हुई।
3: गुड कैच बाय एक्लस्टन देयर, was traveling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the said batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
1: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल ज़माना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। नो कैच एक्लस्टन द्वारा। सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है, ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरल्स में ज़्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है यूं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एक्लस्टन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
3: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
1: सर ही तो पकड़ लिया एक्लस्टन ने अपना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही हैं, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है, किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
3: पॉइंट इज, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ 2-dimensional इमेज, यू नेवर कैन गेट अ 3-dimensional इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम, इट कैनॉट लीड द गेम इन माई ओपिनियन, बट हु केयर्स।
1: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नज़रिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहाँ से ड्राइव करके इस बार रन मिला है, नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
3: सॉरी विनीत, यू नो इन द अर्लियर डेज बिफोर दैट रूल वाज अबॉलिश्ड देयर यूज्ड टू बी अ सॉफ्ट सिग्नल फ्रॉम द अंपायर, I think that was a better way because then you needed conclusive evidence.

0: थैंक यू सो मच, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन वैशाली, जो बात आपने की उसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम का समापन हम कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ प्लेयर। आई थिंक आकाशवाणी लुक्स फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ यंग टैलेंटेड वुमेन, द लेडीज, द गर्ल्स टू कम एंड बिकम स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स, एंड थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम लोग जाएं, हमारी जो टेक्निकल टीम है, मनोज कुमार, सुशील कुमार, संजय कोटनाला जो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करते रहते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं स्वाति कपूर, अमीशा पटेल, तन्मय पंत और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, आप सब तक ये प्रसारण बहुत मेहनत मशक्कत के साथ लेकर आए हैं। आशा करते हैं ये प्रसारण, सजीव प्रसारण, लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप सभी को पसंद आई होगी।
1: जी, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट यू मेड द वर्ल्ड कप फाइनल अलाइव फॉर ऑल आवर लिसनर्स एज वेल एज अस, सो थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज गीतांजलि, Munish and all the team from Akashvani saying keep on enjoying cricket. Thank you for joining us.
2: Player of the match.
3: Medium wave 215.05 meter, yani 1395 kilohertz or FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 12:27 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अगली सभा में अब से कुछ ही देर बाद सवेरे 5:53 पर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।